0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

तुरंत आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास मॉर्निंग।

0: Independent Radio Station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲੋ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
3: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
4: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million rials cash prizes.
1: Jeetne ke 4 raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 rials growth par paiye ek coupon.
2: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
1: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट अब
3: होगी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक

ने सुना, आप सुन रहे हो बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 6:28 हो चुके हैं और यहाँ पे जो है हमारे पास मैसेजेस आए हैं थोड़े थोड़े, सारे मैसेजेस जरा मैं तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जुल्फी भाई का मैसेज आया, लिखा है कि गुड मॉर्निंग, वैल्यूएबल्स वी कैरी में इम्प्रेस अदर्स बट वैल्यूज वी होल्ड विल इंस्पायर अदर्स। बिल्कुल सही बात कही है, शत प्रतिशत में आपकी बात से सहमत हूँ जुल्फी भाई, गुड मॉर्निंग आपको। और मुझे मैसेज आया है मोहम्मद आमिर भाई का, उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव जी, हैप्पी संडे, और काफी प्यारा एक फोटो भेजा है उन्होंने। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं। शशिकांत पाटिल जी का मैसेज आया है और उन्होंने लिखा है गुड मॉर्निंग, अ सैटिस्फाइड लाइफ इज बेटर देन अ सक्सेसफुल लाइफ बिकॉज आवर सक्सेस इज मेजर्ड बाय अदर्स बट आवर सैटिस्फैक्शन इज मेजर्ड बाय आवर ओन सोल माइंड एंड हार्ट। बिल्कुल सही बात कही है भाई, बिल्कुल सही बात, शत प्रतिशत आपकी बात से भी मैं सहमत हूँ। और नाजनीन जी का भी मैसेज आया है और लिखा है मे यू हैव सक्सेस इन एवरीथिंग यू टेक अप दिस डे, मे यू कंप्लीट एवरीथिंग दैट यू सेट आउट टू डू, एंड मे यू बी ब्लेस्ड एंड फाइंड हैप्पीनेस इन एवरीथिंग यू डू, गुड मॉर्निंग करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ही प्यारा और क्यूट सा एक दिन जो है मैं विश करना चाहूंगा। आज थोड़ा सा लेट हो गए हम, मैं माफी चाहूंगा, बात यह है कि कुछ ना कुछ कामों में उलझ गए थे, उलझे नहीं थे, थोड़ा भटक गए थे, बट कितना भी अगर हम भटके, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं होता कहता है, तो मैं सुबह ही भूला और सुबह ही पहुंच गया। तो जी हाँ, सफर जो है यहाँ से हम शुरू करते हैं, थैंक यू सो मच वेट करने के लिए मेरा, और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल पूछता हूँ मैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का, उसके साथ जो है हम ये सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, हम सब फोन यूज करते हैं, कुछ कुछ लोग जो है मुझे अभी फोन के थ्रू सुन रहे होंगे, कुछ कुछ लोग रेडियो सेट के थ्रू सुन रहे होंगे, मगर फोन से रिलेटेड सवाल है। हम सब फोन यूज करते हैं कॉल करने के लिए, बातचीत करने के लिए, फोटोज खींचने के लिए, इंस्टाग्राम पर जाने के लिए, फोटो डालने के लिए, सब करने के लिए, एंड कॉलिंग इज द लीस्ट फीचर या फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो है अब उस फोन में रह चुका है। एक मिनी कंप्यूटर हम लेके घूमते हैं, तो मेरा सवाल कॉलिंग से रिलेटेड है। कॉल करने के लिए हमें सिम चाहिए होता है फोन में, सिम SIM, उसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। आप मैसेज कर दीजिए 3311063 पर तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी, और बताइए मुझे सिम का फुल फॉर्म क्या होता है। देखते हैं कितने लोग पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवी दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं इन सबसे कितने तेज हैं। Stay tuned, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था एक सवाल, सवाल ये था कि भाई सिम जो है हम फोन में यूज करते हैं कॉल करने के लिए, उसका फुल फॉर्म क्या है। हमारे पास मैसेजेस आए हैं, मोहम्मद आमिर भाई ने मैसेज किया है और उन्होंने लिखा है सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, और उसके साथ साथ मुझे शहजाद भाई का भी मैसेज आया है, उन्होंने बोला है सिम इज सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल गुड मॉर्निंग करके। आप दोनों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। और मुझे हाजी नवीद खान पठान साहब ने एक फोटो भेजा है, वो गुड मॉर्निंग बोलते हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इदरीस भाई का भी जो एक फोटो आया है गुड मॉर्निंग बोल के, एक बहुत ही प्यारा फोटो जो है उन्होंने आज सेंड किया है, एक सिंगल का है और बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने सही जवाब दिया, यानी कि जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया है, शहजाद भाई, मोहम्मद आमिर भाई, अनिल भाई, इन सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो सबके लिए बजेंगी तालियां। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आर्ट, बहुत आर्ट। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेट करने के लिए। और थोड़ी ही देर में जो है हम गानों के उस पर वापस आएंगे, नेक्स्ट आवर में वापस आएंगे। मौसम के बारे में जरा बात करते हैं, बहुत सीरियस बातें हैं, ऐसे देखते हैं क्या है। अभी फिलहाल गाने सुनते हैं, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर, और कहते हैं जियो बिंदास।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल।

0: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो चुके हैं और यहाँ पे चलिए मौसम का हाल क्या है देखते हैं। अभी का टेम्परेचर जो है वो है 31 डिग्री सेल्सियस और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 29 डिग्री सेल्सियस और हवा जो है 9 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बह रही है। और मेरा सवाल यही है कि क्या ये हवा मुझे उड़ा के तो नहीं ले जाएगी? ना मुन्ना ना, ये हवा तुम्हें कहीं भी नहीं ले जाएगी, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई मुझे जो है इदरीस भाई ने फोटो भेजा है और उन्होंने काफी बढ़िया फोटो जो है क्लिक करके भेजा है आसमान का, एकदम बढ़िया तरीके से जो है आसमान बिल्कुल खाली खाली नीला, एकदम बढ़िया आसमान, मतलब क्लियर स्काई, क्लियर स्काई। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि देखिए आप लोग अभी डिफरेंट डिफरेंट जगह से ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए अभी आसमान कैसा है, आसपास का मौसम कैसा है, एक फोटो खींचिए, जरा भेज दीजिए, बताइए आपके हाल क्या है तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी 3311063 पर आप जो है एक फोटो भेज दीजिए, दिखाइए आपके आसपास के नज़ारे कैसे हैं। क्योंकि मैं तो स्टूडियो के अंदर बैठा हूं, मुझे तो नहीं दिख पाएगा इन चार दीवारों के अंदर। मैं चाहूंगा कि आप मेरी आंखें बनिए और जरा नज़ारे दिखाइए मुझे। अभी यही बोलते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा एक गाना जो हमें प्ले करना चाहेंगे आपको, आपके लिए, फहीम अब्दुल्ला और चिन्मयी की आवाज में, डकॉइट मूवी का गाना है ये, एक नया गाना है। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई स्टेशन क्लॉक में 7:17 हो चुके हैं और यहाँ पे सामी भाई का मैसेज मुझे आया है और उन्होंने एक फोटो भेजा है बहुत ही प्यारा वाला। अस्सलाम वालेकुम सुदेव भाई और कशिश नहीं आई वैसे, थैंक यू सो मच सामी भाई, वालेकुम अस्सलाम ये मैसेज करने के लिए। और बहुत ही प्यारा फोटो भेजा है आपने, आसमान काफी आज खुला खुला सा है, खाली सा है, क्लियर स्काई। मतलब यहाँ पे जब मैं आया था पहले तो मैं बहुत ही अचंभित था कि यार यहाँ का आसमान तो काफी खाली है, मतलब बहुत क्लियर स्काई है, एकदम नीला, एकदम साफ बिल्कुल। तो थोड़ा टाइम मुझे लगा इस चीज को ऐसे डाइजेस्ट करने के लिए, यार ऐसे कैसे हो सकता है, बिना बादलों के कैसे हो सकता है, क्योंकि बादल तो इंपॉर्टेंट है बाबू। बट हाँ मजा आया वैसे, जो भी इतने एक ढाई साल डेढ़ सालों में मैं इसे देख रहा था, जिस तरीके से मैंने सीजन वाइज यहाँ के आसमान में जो चेंजेस आते हैं उनको ऑब्जर्व किया, तो सही में अच्छा लगा मुझे। और आज सुबह जब मैं निकल रहा था घर से तो मैं ऐसे खड़ा था और सूरज की रोशनी हल्की हल्की जब ऐसे मेरे चेहरे पे मेरे आंखों में से पड़ रही थी तो एक अलग सुकून मिल रहा था मुझे। तो उस टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी फीलिंग है। सुबह जब हम उठते हैं फुर्सत के साथ उठते हैं, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालते हैं, धूप वूप ऐसे सेकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और खुश रहने के लिए ना बहुत ज्यादा बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है, खुशियां छोटी छोटी चीजों में मिलती है, बस देखना होता है उन्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर आजकल की रोजमर्रा की जिंदगी में जो भागदौड़ में हम फंसे हुए हैं, एक टनल विजन में हम जो जा चुके हैं, तो आसपास की छोटी छोटी खुशियां हमें दिख नहीं पाती हैं। मैं यही आपको एक बताना चाहूंगा बात कि देखिए जो हमारा लक्ष्य है उसकी तरफ तो आगे बढ़ना है, मगर जरा आसपास भी देखिए, शायद छोटी छोटी खुशियां मिल जाएं जो आपको रास्ते में और ऊर्जा दे, ताकत दे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त हिट सुनते हैं। थोड़ी ही देर में जब हम आएंगे तो करेंगे फिटनेस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ओलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त हिट।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहाँ पे भाई वक्त हो चुका है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करने का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, फिटनेस के एक एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। फिट है तो हिट है,
1: फिट है तो हिट है।
0: तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो फिटनेस के बारे में यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा वो है ग्रिप स्ट्रेंथ और लॉन्जिटिविटी के बारे में एक कनेक्शन। लॉन्जिटिविटी नहीं, लॉन्जिविटी जो है मतलब ग्रिप स्ट्रेंथ और हमारे कितना लंबा हम जिएंगे उसके बीच में जो है एक ताल्लुक है। एक साइंस बेस्ड रिसर्च आया है और रिसर्च ने काफी स्ट्रांगली शो किया है कि ग्रिप स्ट्रेंथ सिर्फ हाथ की स्ट्रेंथ नहीं बल्कि ओवरऑल बॉडी का हेल्थ इंडिकेटर है। स्टडीज जो स्पेशली लार्ज पॉपुलेशन स्टडीज में कंडक्ट किया था उसमें ये देखा गया है कि जिनके पास स्ट्रांगर ग्रिप स्ट्रेंथ होती है उनमें हार्ट डिसीज का रिस्क कम होता है, ओवरऑल मॉर्टिलिटी रिस्क लोअर होता है, बेटर मसल मास और फिजिकल फंक्शन होता है। ग्रिप स्ट्रेंथ एक्चुअली ये रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे बॉडी का जो टोटल मसल स्ट्रेंथ है वो कितना है, नर्वस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी है और फंक्शनल फिटनेस यानी कि डेली लाइफ की स्ट्रेंथ कितनी है। और एक फेमस स्टडी द लैंसेट में जो पब्लिश हुआ था उसमें ये सजेस्ट किया है कि लो ग्रिप स्ट्रेंथ जो है फ्यूचर हेल्थ रिस्क का स्ट्रांग प्रेडिक्टर हो सकता है, कभी कभी ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा इंडिकेटिव। तो सिंपल लॉजिक ये है कि जब बॉडी स्ट्रांग और एक्टिव होती है तो मसल्स, हार्ट, मेटाबॉलिज्म सब बेटर काम करते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ इंप्रूव होती है। तो इसका एक प्रैक्टिकल टेक अवे क्या है, अगर आप अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हो कैसे कर सकते हैं, डेड हैंग्स कर सकते हैं, फार्मर्स कैरी कर सकते हैं, हेवी लिफ्टिंग कर सकते हैं यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो होती है, तो इससे आप इनडायरेक्टली अपने ओवरऑल हेल्थ और लॉन्जिटिविटी को भी जो है सपोर्ट कर रहे हो। और शॉर्ट में बात यही है कि भाई स्ट्रांग ग्रिप इज इक्वल टू स्ट्रांग बॉडी इंडिकेटर विच इज इक्वल टू बेटर लॉन्ग टर्म हेल्थ पोटेंशियल। तो एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, ग्रिप स्ट्रेंथ आपकी इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ के बाकी सारे हेल्थ एस्पेक्ट्स भी जो है इंप्रूव हो जाएंगे। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और चलिए भाई, लोकल अपडेट्स में एक खास खबर जो है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे, विजिट कतर के किड्स गो फ्री हाला समर 2026 कैंपेन के बारे में। तो इस कैंपेन का ड्यूरेशन जो है 1 मई से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, यानी कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ढेर सारे एक्टिविटीज होंगी। और होटल एंड डाइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कतर के 100 से ज्यादा होटल्स में 2 बच्चों तक का स्टे और खाना, यानी कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये है, बिल्कुल फ्री है अगर वो पेरेंट्स के साथ रूम शेयर कर रहे हैं तो। एंटरटेनमेंट और टूर्स की बात करें तो बच्चों के लिए थीम पार्क्स, वाटर पार्क्स, म्यूजियम्स और डेजर्ट सफारी जैसे टूर्स पर बाय वन गेट वन या बाय टू गेट वन जैसा डील जो है आपको मिलेगा। विजिट कतर वॉलेट की अगर हम बात करें तो होटल चेक इन के वक्त गेस्ट को एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे स्कैन करके वो विजिट कतर वॉलेट से एक्सक्लूसिव वाउचर्स और डिस्काउंट्स जो है अनलॉक कर सकते हैं। और इस सीजन में कतर टॉय फेस्टिवल, माइनक्राफ्ट वर्ल्ड, फॉन्टाना सर्कस जैसे बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, साथ ही 10 बड़े मॉल्स में लाइव शोज और एक्टिवेशंस भी होंगे। तो भाई बच्चों के लिए मजे ही मजे होने वाले हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर में गानों के उस पार हम ऑलिव अपडेट्स के साथ आएंगे। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Geo Bindas.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

0: सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

0: Radio Olive 106.3 FM. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon और mega draw ticket.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Hello to all the listeners of Radio Olive.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:16 हो रहे हैं और यहाँ पे सच बताऊं तो खुश तो मैं बहुत हूँ, क्योंकि अगर हम कल के मैच की बात करें तो यस, चेन्नई और मुंबई का मैच था और बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, एक नॉर्मल स्कोर जो T20 में जो यूजुअली होता है 159 का जो है स्कोर बनाया था मुंबई ने। 20 ओवर्स में 7 विकेट भी गिर गए थे चेन्नई के बॉलर्स ने, तो बहुत ही टाइट तरीके से जो है मुंबई को डील किया, मुंबई के बैटर्स के साथ डील किया। और अगर हम चेन्नई की बैटिंग की बात करें तो 18.1 ओवर्स में उन्होंने काफ़ी आराम से क्रूज करते हुए जो है मैच को जीत लिया, 160 रन स्कोर किए, 2 विकेट्स गिर भी गए थे। और यहाँ पे खुशी की बात ये भी है कि ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो धीरे धीरे धीरे अपने फॉर्म में वापस आ रहे हैं और उन्होंने 67 रन स्कोर किए 48 बॉल्स में, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के लगे थे उन्होंने, और जिसमें स्ट्राइक रेट जो है इनका 139.58 का बन रहा है। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे कार्तिक शर्मा आए जिन्होंने 40 बॉल्स में 54 रन स्कोर किए, 135 उनका स्ट्राइक रेट था। और उसके साथ अगर मैं देखूँ तो यार देखिए, मुंबई के बॉलर्स ने भी थोड़ा अच्छा प्रेशर जो है डाला है, उन्होंने भी उतना भी ढीला नहीं छोड़ा है और चेन्नई ने आराम से जो है, क्योंकि ज़्यादा स्कोर नहीं था तो ये नॉर्मल स्कोर था T20 के हिसाब से, जो एक डिसेंट स्कोर है, जो अगर हम एक बेसिक पेस अगर पकड़ के चले तो भी जीत सकते हैं, उसके हिसाब से मैच जो है उन्होंने अपने हाथ में लिया। और अगर हम यहाँ पे बात करें मुंबई इंडियंस के बैटिंग के बारे में, तो मुंबई के लिए सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए नमन धीर ने, 57 रन स्कोर किए 37 बॉल्स में। उसके बाद जो है फिर आए रायन रिकल्टन, उन्होंने 24 बॉल्स में 37 स्कोर किया, एंड सूर्य कुमार यादव ने 12 बॉल्स में 21 रन स्कोर किए, और हार्दिक पांड्या ने 23 बॉलों में 18 रन स्कोर किए, तो उनका जो पूरा टोटल बना वो था 159 का। और मुंबई का जो लूजिंग स्ट्रीक है वो चल रहा है, चेन्नई ने 4 मैचेस जीत लिए हैं, अब देखते हैं कि भाई आज कौन से मैचेस होने वाले हैं, और आज तो 2 मैचेस होने वाले हैं, कौन से मैचेस हैं, क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास। कूल सॉन्ग
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
0: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
0: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible हैं.
1: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon. और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

कभी खुशी कभी हम मूवी का गाना हमने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:28 हुए हैं और यहाँ पे जो है आज के मैचेस के बारे में बात करते हैं। आज दो मैच होने वाला है, आज संडे है, इंडिया में छुट्टी है, तो आज पहला मैच होने वाला है हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, दूसरा मैच होने वाला है पंजाब और इसके साथ साथ गुजरात के बीच में। अब जरा हम स्टैंडिंग्स देख लेते हैं, ठीक है। पंजाब जो है फर्स्ट पोजीशन में है, गुजरात जो है फिफ्थ पोजीशन में है, और उसके बाद हैदराबाद और कोलकाता के मैच में हैदराबाद थर्ड पोजीशन में है और कोलकाता एट्थ पोजीशन में है। अगर हम पंजाब और गुजरात की बात करें तो पंजाब टेबल टॉप में है 13 पॉइंट्स के साथ, 8 मैचेस खेले हैं, 6 मैचेस जीते हैं, 1 मैच वो हारी है। और अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात ने 9 मैचेस खेले हैं, 5 मैचेस वो जीते हैं, 4 मैचेस वो हारे हैं। और बात करें हैदराबाद और कोलकाता की तो हैदराबाद ने 9 मैचेस खेले हैं जिसमें से 6 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और कोलकाता ने 8 मैचेस खेले हैं जिसमें से 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं। तो हैदराबाद की तो काफ़ी कम्फर्टेबल पोजिशन है ये, कोलकाता के लिए हार जीत ज़्यादा एक बड़ा डिफरेंस लेकर नहीं आएगा क्योंकि वो अपने पोजीशन से ज़्यादा 8th से 7th में आ सकते हैं, उससे ज़्यादा एक चेंज तो नहीं आ सकता, मुझे लगता है तब भी नहीं होगा क्योंकि उनके जस्ट ऊपर दिल्ली है 8 पॉइंट्स के साथ, तो वहाँ पे भी एक दिक्कत जो है हम देख सकते हैं। अब देखिए अभी अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात अगर ये मैच जीत जाता है तो गुजरात भी जो है थोड़ा ऊपर आ सकता है, मगर उसके ऊपर की जो तीनों प्लेयर टीम्स हैं राजस्थान हैदराबाद और बैंगलोर तीनों के 12 पॉइंट्स हैं, बट अगर बहुत ही अच्छे रन रेट के साथ ये लोग खेलते हैं तो शायद कुछ हो सकता है, टॉप 4 में जगह बना सकते हैं। देखते हैं आज के मैच में क्या होगा, आपको क्या लगता है आज के हैदराबाद और कोलकाता के मैच में कौन जीतेगा, आपका प्रेडिक्शन क्या है मुझे बताइए। उसके साथ साथ पंजाब और गुजरात के बीच में कौन जीतेगा ये भी आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से कौन हो सकता है आज का विनर। यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं, दिल कबड्डी मूवी का गाना सुनते हैं सचिन गुप्ता और जसप्रीत की आवाज में। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. I'm
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक छोटा सा एक खबर जो है अपने हाथ में लगा है, तो चलिए सुनते हैं। तो हमें ये जानने को मिला है कि इंस्टाग्राम में जो है व्यूज गिर रहे हैं, लोगों को व्यूज नहीं मिल रहे हैं। क्या हो चुका है, ऐसा क्या चेंज आया है जिसके कारण लोगों को व्यू नहीं मिल रहा है? क्या एल्गोरिथम में कोई बड़ा चेंज आया है या इंस्टाग्राम चाहता है कि सबको कम व्यू मिले? ऐसा कुछ नहीं है, मैं जरा बता देता हूं। देखिए, इंस्टाग्राम के व्यूज गिर रहे हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म ने व्यू को काउंट करने का जो तरीका है उसको चेंज कर दिया है। अब पहले क्या होता था, एक सेकंड में जो है अगर कोई देखता है तो व्यू काउंट हो जाता। अभी मिनिमम 3 सेकंड अगर कोई एक रील में रहता है तो व्यू काउंट होता है, और रीवॉचेस, लूप्स, रीप्लेज ये भी काउंट किए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट 3 सेकंड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो तो भाई पहले 3 सेकंड का जो एक हुक हो जो आपका होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके व्यूज को आगे बढ़ाएगा। और करोसल्स जो है काफी ज्यादा आजकल ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं क्योंकि करोसल्स में जो स्वाइप को है उसको भी एज अ न्यू व्यू काउंट किया जाता है, यानी कि एक ही यूजर एक ही पोस्ट में मल्टीपल व्यूज जनरेट कर सकता है। और हाँ, कैच ये है कि आपके खुद के व्यूज काउंट नहीं होते, ठीक है? तो बेसिकली आप रीच लूज नहीं कर रहे हो, फेक व्यूज को लूज कर रहे हो। और इंस्टाग्राम जो है आजकल रियल एंगेजमेंट को काउंट कर रहा है, तो पहले के सेकेंड्स में भाई बहुत ही बढ़िया स्वाइप वर्दी करोजल्स या फिर पोस्ट बनाइए जिससे लोगों का अटेंशन जो है बना रहे। और यही बात याद दिलाते हुए एक बहुत ही प्यारा गाना जो है हम आपके लिए प्ले करना चाहेंगे, आपके रेडियो सेट में प्ले होने वाला एक बहुत ही प्यारा गाना, मतलब क्या बताऊं, इतना प्यारा गाना कि सुन के आप झूम उठोगे। तो चलिए जोगी सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। पंजाबी एमसी का गाना है, स्टे ट्यून्ड हियर रेडियो 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। रेडियो

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

आप सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है, ये है बिंदास मॉर्निंग्स ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। भाई यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया एक बात मैं बताना चाहूंगा, एक मेडिकल ब्रेक थ्रू के बारे में बताना चाहूंगा। हमद मेडिकल कॉरपोरेशन ने कतर का पहला एडवांस्ड अमिलॉइड ब्रेन पेट सीटी स्कैन जो है लॉन्च किया है, जो अल्जाइमर्स के अर्ली साइंस को डिटेक्ट करता है। ये स्कैन एक नॉन इन्वेजिव स्कैन है और April 23rd, 2026 को पेशेंट्स का पहला कोहोर्ट जो है उसके साथ इसका यूज किया गया था। इस टेक्निक से ब्रेन में बीटा अमिलॉइड प्रोटीन डिपॉजिट्स को डिटेक्ट करते हैं जो अल्जाइमर्स का मेन इंडिकेटर होता है। स्कैन की हेल्प से डॉक्टर्स जो हैं अल्जाइमर्स को दूसरे डेमेंशिया टाइप से क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और बेटर ट्रीटमेंट प्लान जो है बना सकते हैं। और ये सर्विस क्लिनिकल इमेजिंग डिपार्टमेंट और रमेला हॉस्पिटल के जेरियाट्रिक मेमोरी क्लिनिक के कोलैबोरेशन से चल रही है ताकि पेशेंट केयर स्मूथ और कनेक्टेड रहे। तो देखिए, जैसे कि मैं कई बार ये चीज़ ऑब्जर्व कर चुका हूँ, नोट कर चुका हूँ कि हमेशा मेडिसिन फील्ड में, मेडिकल फील्ड में जो है एक ब्रेक थ्रू टाइम टू टाइम जो है कतर लेकर आ रहा है ताकि पेशेंट्स को एक अच्छा केयर मिल पाए और उसके साथ साथ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज जो है ये एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है ताकि हम इनिशियल स्टेज में ही प्रॉपर स्टेप्स ले पाए जिससे फर्दर डैमेज ना हो पाए या फिर फर्दर प्रॉब्लम्स अराइज ना हो पाए। और यही बात बोलते हुए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, धुरंधर दिव्यंश से सुनते हैं जैस्मिन ड्रिबल और शाश्वत की आवाज में एक बहुत ही बढ़िया गाना। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106।

0: अक्षय कुमार का दिल चुरा के जो गोरिया निकली है वो यहाँ पे मेरे सामने आगे बैठ चुके है गाइस, वो यहाँ बैठ चुके है, वो पहुंच चुके है यहाँ पे। तो अक्षय भाई यहाँ पे है भाई। तो चलिए पूरे शिद्दत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ हम उन गुड़िया का जो है स्वागत करते हैं हमारे शो में। यह है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव, और मेरे साथ हैं, नाम बताइए अपना,
1: तनीषा।
0: क्या बात,
1: झूठे इल्जाम क्यों लगा रहे हैं मुझ पे?
0: क्या इल्जाम लगाया मैंने आप पे?
1: मैंने किसी का दिल नहीं चुराया।
0: अरे आपको पता नहीं होता ना, आप चल के जाते हो रास्ते में, लोग कहते हैं अरे दिल कहाँ गया, दिख नहीं रहा, आप तो चुरा के निकल लेते हो। यू आर क्लेप्टोमैनियक व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ स्टीलिंग हार्ट्स। थोड़ा साइंटिफिक हो गया ना, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आजकल डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में कैसे एक ही चीज को कन्वे कर सकता हूँ वो सोच रहा हूँ।
1: वो तो आप प्रो है सर।
0: नहीं कहा मैम, आपके सामने प्रो कहा है हम। हम प्रो है तो आप प्रोफेशनल हो।
1: मॉडेस्ट हो रहे हैं आप।
0: अरे कहाँ मॉडेस्ट हो रहे हैं, हम तो जस्ट जो है वही बता रहे हैं, हमारा थोड़ा ना मॉडेस्ट। से मुझे याद आया एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी मैं यहाँ पे जो है अपने लिसनर्स को बताने वाला था। आप आ गए तो आपको भी बता देता हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। तो हम कुछ दिन पहले मॉल ऑफ कतर गए थे। मॉल ऑफ कतर में हमने माइकल जैक्सन शो जो है देखा था। और हम सब जानते हैं कि माइकल की मूवी जो है निकली हुई है, उनके बायोपिक उस, और उसमें जफार जैक्सन ने एक्ट किया है। तो आज सुबह जब मैं आ रहा था ऑफिस की ओर तो मैंने एक बहुत ही अच्छा पोस्ट देखा जहाँ पे लिखा था कि एक बार माइकल जैक्सन को रात के 2 या 3 बजे कुछ एकदम से आइडिया आया और उन्होंने स्टूडियो में बुला के बोला कि मुझे गाना रिकॉर्ड करना है। सब रिकॉर्ड करने के लिए गए तो जो स्टूडियो का साउंड इंजीनियर था उसने बोला कि यार रात के अभी क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली, जो बात जब मैंने सुनी तो मुझे भी समझ आया कि वाह यार दिस इज एक्चुअली आई ओपनिंग। तो बात उन्होंने बोला कि यार सी ये जो है खुदा मुझे दे रहा है, ठीक है, ये आइडिया मुझे खुदा दे रहा है, अगर मैंने इसे अभी नहीं बनाया तो शायद प्रिंस बना देगा गाना, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग कि वॉट एवर आई एम डूइंग इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज जस्ट फ्लोइंग थ्रू मी। तो जो भी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स हैं, जो सिंगर्स हैं या फिर डांसर्स हैं, एक्टर्स हैं,
1: इवन आर्ट,
0: या इवन यहाँ पे मुझे मोहनलाल के बारे में भी एक चीज मेंशन करनी है, उनसे हमेशा पूछा जाता है कि आप इतने बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे देते हो। तो वो यही बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, इट जस्ट हैपेंस, वो हो जाता है। तो नाउ व्हेन यू लुक एट थिंग्स, नाउ व्हेन यू लुक एट द ग्रेटनेस अराउंड यू, तुम्हारे आसपास जितने भी ग्रेट लोगों ने परफॉर्म किया है, जब तुम उनके परफॉर्मेंसेस को देखते हो तो तुम्हें पता चलता है कि जो भी हो रहा है इट इज समथिंग बिगर देन देम एंड दे आर जस्ट बीइंग दैट चैनल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे वो ग्रेटनेस जो है फ्लो करके जा रही है। अगर हम एक बहुत ही बढ़िया डांस परफॉर्मेंस देख रहे हैं तो उस आर्टिस्ट के थ्रू वो जो एक ग्रेटनेस है वो फ्लो करके जा रही है।
1: That energy touches you as well.
0: Exactly.
1: Goosebumps, the reactions.
0: True, true, true, true, true. ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और जब मैंने फिर उस चीज के बारे में सोचा और रियलाइज किया कि यार सही बात है, कभी कभी जब हम बैठ के बात करते हैं तो आपने पूछा है कि यार कि तू ऐसे कैसे सोच लेता है या फिर ये चीज कैसे आ जाती है, और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे नहीं पता, जस्ट कम्स, वी आर जस्ट द वेसल। एंड यू नो माइकल जैक्सन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस चीज को उन्होंने एक्नॉलेज किया। द होल पॉइंट ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन इज दैट कि ही एक्नॉलेज्ड कि मैं तो बस एक वेसल हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो मेरे थ्रू जा रहा है, ये निकल रहा है मेरे से। एंड दैट इज व्हाई यार किंग ऑफ पॉप बोलते हैं उन्हें। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना बड़ा एक आई ओपनर था सुबह जब मैंने देखा। मैं एक वो मुस्कुराहट आ जाती है ना मन से, तुम जब मुस्कुराते हो तुम्हें पता चलता है कि यार क्या प्यारी बात बोली है यार, वाह यार, वैसी बात थी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और यही बात बोलते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, जबरदस्त बात के बाद सुनते हैं एक जबरदस्त हिट। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
1: जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: से है।
1: भाई बंदा बंदा बिंदास है ये तो नहीं पता, मगर मेरे सामने जो बंदी बैठी है वो बिंदास है। होगी भी कैसे नहीं, नाम उसका तनीषा है
2: और हमारा टैगलाइन है जियो बिंदास।
1: आप थोड़ा माइक के पास आओ।
2: और कितना पास आओ?
1: बस घुस जाओ माइक के अंदर।
2: क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है?
1: क्या मेरी आवाज आ रही है?
2: मैसेज करके बताइए।
1: वेलकम बैक, ये बिंदास मॉर्निंग्स और मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव, और मेरे साथ यहाँ पे तनीषा मैडम हंसती हुई खिलखिलाती हुई चेयर में इधर उधर घूमती हुई। वैसे आज काफी एथनिकली स्टाइलिश बनकर आ गया यार आप।
2: आई नो राइट?
1: हाँ, काफी अच्छा डिजाइन पैटर्न ये सब है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ शॉपिंग के लिए जाता है ना उसकी चॉइस बहुत अच्छी है।
2: या माय मदर।
1: हाँ हाँ, बट ये तो आपने यहाँ से खरीदा ना?
2: नहीं तो।
1: हाँ, उसमें लिखा तो है, ब्रांड कहाँ दिख रहा है मुझे?
2: कहाँ दिख रहा है तुझे? कुछ भी बोल रहा है।
1: अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैं और तनीषा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में हम ऑफ एयर में डिस्कस करें, तो हमने सोचा यार ऑन एयर में भी इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो बात देखिए बहुत ही सिंपल है। हम सब देखते हैं कि जब भी हम किसी भी वर्क प्लेस में देखते हैं चीजें या फिर पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बहुत सारे लीडर्स में एक क्वालिटी मिसिंग है। तो मैं हम लीडर्स नहीं बोल सकते, बहुत सारे मैनेजर्स में एक क्वालिटी मिसिंग है जो है एम्पथी का। ठीक है, उन्हें लगता है कि यार लोग काम कर रहे हैं हमारे लिए तो हम कुछ भी करवा सकते हैं। बट बात यह है कि बदलते हुए वक्त के हिसाब से सोच नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदल सकता।
2: देन यू कैन नॉट ग्रो, नाइदर प्रोफेशनली नॉर पर्सनली।
1: बिल्कुल सही बात कही है आपने। और इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा तनीषा मैडम, हमारी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, तो आपसे अगला सवाल आता है। क्या बात कर, इतनी तारीफ तो सालों से नहीं हुई है करके।
2: बहुत प्रेशर डाल
1: दिया। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं प्रेशर को थोड़ा एग्जॉल्व कर देता हूँ। हमारी कोई नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का फिर भी। बट या सवाल मेरा आपसे ये है कि यार देखिए वर्क की जो हम बात करते हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ कॉम्पिटेंसी तो नेसेसरी है। तो यू हैव टू बी, मतलब तुम कम्प्लीटली कम्प्लेसेंट भी नहीं हो सकते। तुम्हें थोड़ा प्रोएक्टिव रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बट वो बाउंड्री कहाँ पे जब तुम्हें लगता है कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब वॉट इज दैट बाउंड्री और वेयर डू यू ड्रॉ दैट बाउंड्री वेयर यू रियलाइज कि यार ये काम ठीक है बट ये बोझ बन रहा है।
2: वेन फ्रॉम द एम्प्लॉयज पर्सपेक्टिव, वेन यू आर फीलिंग दैट यू आर कॉन्स्टेंटली गिविंग, यू नो, जब वो एक यूजुअली ये चीज हमें स्टार्ट से लगता है कि अरे मैं तो बहुत बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ कंपनी के लिए, नॉट नेसेसरीली, बट देयर कम्स अ पॉइंट वेयर यू आर इन एवरी डिसीजन, यू नो, वेयर एवर समथिंग बिग इज हैपनिंग और एनीथिंग इम्पॉर्टेंट इज हैपनिंग इन द ऑफिस एंड यू हैव टू बी देयर, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट एंड इवेंचुअली इट कम्स टू अ पॉइंट वेन यू आर फीलिंग कि यार मैं तो बहुत ज्यादा खुद को एक्सटेंड कर रही हूँ बट आई एम नॉट गेटिंग इन रिटर्न। मैं अपना फिजिकली ही ध्यान नहीं रख पा रही हूँ।
1: अच्छा, ऐसे फीलिंग्स अगर आती हैं,
2: व्हेन इट स्टार्ट्स टू कम यू नीड टू सी थ्रू इट, यू नीड टू फिगर थिंग्स आउट एंड देन कम्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स पर्सपेक्टिव आल्सो।
1: हम दोनों पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। तो प्लीज,
2: दे माइट आल्सो फील द सेम दैट यू नो आई एम गिविंग ऑल द रिसोर्सेज, आई एम ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजियर फॉर देम बट दे आर नॉट एबल टू डू थिंग्स।
1: वेरी गुड। यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ जो लोग मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, अभी यहाँ पे तनीषा ने जो है एक केस स्टडी को कोट किया है जहाँ पे एम्प्लॉय के साइड से, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। अब इन दोनों केस में हमें पता है कि दोनों सही है, यहाँ पे गलत कोई नहीं है, मगर दोनों सफर कर रहे हैं।
2: Exactly.
1: इस चीज को कहते हैं रेशोमोन इफेक्ट। रेशोमोन इफेक्ट क्या होता है, मतलब दो तीन लोग अगर एक सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, वो तीनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पर्सपेक्टिव से चीजें बताएंगे बट जरूरी नहीं है कि वो सही हो। ठीक है, तो रेशोमोन इफेक्ट ये भी हमें बताता है कि सारे अकाउंट सुनो और सारे अकाउंट सुनने के बाद ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लो। अब देखिए मोस्टली कंपनीज में क्या होता है, जब एम्प्लॉय समझता है यार हम तो बहुत काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयर समझता है तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रेशोमोन इफेक्ट का एक सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। तो दोनों एक ही टेबल पर आओ, बात करो, देखो क्या क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है भाई, हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आईटी हो, अगर कोई इंसान एक प्रॉब्लम लेकर आ रहा है तो सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है.
2: ये समझना कि हाँ,
1: पेशेंस नहीं होता, स्किल नहीं होता, बहुत रहता है. बट सी, अगर हम एक पोजीशन में हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मुझे एक सर ने बताई थी. मेरे कॉलेज में एक सर आए थे, ऐसे गेस्ट आए थे वो फिनिशिंग स्कूल के टाइम पे, और उन्होंने बोला था कि जब भी अगर तुम ऐसे पोजीशन में हो जहां पे लोग तुम्हारे नीचे काम कर रहे हैं, तो हमेशा उनकी सुनो.
2: Yeah.
1: उनकी सुना करो, क्या पता तुम्हें वो चीज मिल जाए जहां पे तुम रियलाइज करो कि शायद तुम गलत हो या फिर तुम्हारे तौर तरीके गलत हो सकते हैं. तो अनलर्निंग में तुम्हें सबसे ज्यादा वही हेल्प करेंगे जो तुमसे नीचे हैं या फिर थोड़ा ऊपर है.
2: करेक्ट.
1: और यही बात बताते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं. और यहाँ पे जावेद अली, रेखा भारद्वाज और अनुराधा पौडवाल जो है इंतजार कर रहे हैं गाना गाने के लिए. वो वेट कर रही थी कब तनिषा.
2: सॉरी
1: अरे ठीक है, कोई
2: नहीं, कोई नहीं.
1: तनिषा मैडम ने माफी मांग ली आज दोहा में बारिश. ये फिगर ऑफ स्पीच था, ठीक है. आज ऐसे सही में बारिश नहीं होगी,
2: वरना सबसे देव के पीछे झूठ बोला तूने.
1: ये फिगर ऑफ स्पीच था. यही बोलते हुए आगे बढ़ते और कहते हैं
2: जियो बिंदास
1: मेरी जान.

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेला जादू।
2: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडो ऐप पर। ऑफर वैलिड है 31 मई तक। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक।

तू झूठी मैं मक्कार मूवी का गाना हमने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में। तो भाई धीरे धीरे यहां से टाटा बबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है और 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में मुस्कान यहां पहुंच जाएगी आपके साथ गुफ्तगु करने के लिए, तो मैं यही बोलूंगा कि मुस्कान का खुली बाहों से स्वागत करना, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार जो है मुस्कान को देना। और जाते जाते जाते एक ही चीज आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, वो यही है कि अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। तो हम जरा टटा बबाई करके निकलते हैं धीरे धीरे। उम्मीद करता हूं कि आपका दिन जो है काफी बढ़िया और बिंदास जाए, और दिन को और बिंदास बनाने के लिए यहां पे एक स्पेशल गाना आपके रेडियो सेट में मैं प्ले करना चाहूंगा। तो नाचते हुए झूमते हुए इस दिन को एंजॉय करते हुए कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Blitz आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: All F Short Break टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
4: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम

गुड मॉर्निंग, दिस इज मी मुस्कान विद यू. शो का नाम है लाइफ मस्त है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. और नया वीक स्टार्ट हो चुका है. और सबसे पहला सवाल, हाउ वाज योर वीकेंड? इसको बताने के लिए यू हैव माय नंबर. व्हाट्सएप नंबर है 3311063. और वीकेंड कैसा था ये आप बता सकते हो दो शब्दों में, लाइक प्रोडक्टिव था, लेजी था, या बस OTT प्लस फूड वाला था. सच बताना, वीकेंड कभी प्लान के हिसाब से होता है क्या? मतलब जो आपने प्लान किया है वो वैसा वीकेंड निकला है? भाई मैं फ्राइडे को बोलती हूँ कि इस वीकेंड आई विल डू दिस दैट ये वो, पर होता कुछ नहीं है. मुझे सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज याद आती हैं कि भाई मुझे थोड़ा सा करना है रेस्ट, और उसके बाद थोड़ी सी स्क्रॉलिंग, और फिर थोड़ा कल करेंगे. बस दिन खत्म हो जाता है और फिर संडे वापस आ जाता है. फ्राइडे सैटरडे खत्म हो गया. लेकिन ऑनेस्टली वीकेंड परफेक्ट होना जरूरी भी नहीं है, रिचार्ज होना जरूरी है. और आज मैं एकदम रिचार्ज होकर आई हूँ. बाय द वे, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला, थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम निकाला, और दैट्स अ सक्सेसफुल वीकेंड आई थॉट. सो आप मुझे बताओ कि हाउ वाज योर वीकेंड? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ऑलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: So, वैसे तो कतर में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन कतर हेल्थ केयर सिस्टम एक और लेवल अप जो है वो कर रहा है, और ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है. सो हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है एडवांस्ड एमिलॉइड ब्रेन पीईटी सीटी इमेजिंग सर्विसेज, जो कतर में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है. अब सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ कि अल्जाइमर्स जो है उसकी डिजीज क्या होती है. मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन, स्लो थिंकिंग, और इसका एक मेजर कॉज होता है बीटा एमिलॉइड डिपॉजिट इन द ब्रेन. ठीक है, ये एक तरह का यू नो हार्मोन है, लिक्विड है. अब तक प्रॉब्लम क्या है कि डायग्नोसिस डिफिकल्ट था, क्लियर जो देखना था वो बहुत मुश्किल था, लेकिन अब पीटी इमेजिंग से ब्रेन के अंदर डायरेक्टली ये जो डिपॉजिट है ये डिटेक्ट किया जा सकता है. मतलब अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है, और अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है बेटर ट्रीटमेंट, बेटर प्लानिंग, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. सो डिजीजेस को लेट पकड़ना नहीं, अर्ली समझना इंपॉर्टेंट है. जब हम यू नो इस सर्विस को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आती हैं, सो उनके बारे में तो बात करना बनता है बॉस. बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, और सुन रहे हैं आप लाइफ मस्त है. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑल ऑफ पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: एवरी डे आई टॉक अबाउट बुक और आज भी एक ऐसी किताब लेकर आई हूँ जो 19th सेंचुरी की नॉवल है लेकिन आज भी इतनी रिलेटेबल है कि आप बिलीव नहीं करोगे. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है और ये है बुक इन द फोकस.
1: बुक इन फोकस विद मुस्कान.
0: So the book name is Pride and Prejudice. Basically, ये एक story है Elizabeth और Mr. Darcy की. अब ये कोई typical love story नहीं है, ये story है misunderstanding, ego और slow understanding की. कभी कभी first impression wrong होता है लेकिन real जो connection है वो time तो लेता है boss. मतलब कई बार ऐसा हुआ होगा office में या फिर you know बाहर किसी दोस्तों के साथ, किसी mutual friend से आपका जो first conversation था वो इतना अच्छा नहीं रहा होगा, बहुत ही slow आपको समझ में आया कि सामने वाला person कैसा है, but बाद में धीरे धीरे आपको लगा कि नहीं यार ये तो सही है. सो कभी कभी फर्स्ट इंप्रेशन रॉन्ग होता है लेकिन रियल कनेक्शन थोड़ा सा टाइम ले लेता है. और इस बुक का चार्म क्या है आपको बताती हूँ. शार्प कॉन्वर्सेशन, रियलिस्टिक इमोशंस और सटल रोमांस. लव की बात होती है इस किताब में लेकिन ग्रेजुअली ये ग्रो करता है और एकदम से जो आज का प्यार है ना बिल्कुल वैसा नहीं है ये. अगर आपको भी ऐसे स्लो और अच्छी चीजें पसंद है पढ़ना, धीरे धीरे पढ़ना, देन यू कैन गो विद दिस बुक जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडाइस. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

आजकल AI influencers का नया ट्रेंड आया हुआ है एंड आई वॉज थिंकिंग यार लोगों को छोड़ के अब AI को कौन फॉलो करने वाला है. यू आर लिस्निंग रेडियो 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. पर मैं आपको सच बता रही हूँ कि लोग AI को फॉलो करते हैं और इवन सब्सक्राइब करके पेड फॉलोइंग भी लेते हैं. ऑलमोस्ट 15 रियाल पर मंथ का सब्सक्रिप्शन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल रुतिका पटेल जैसे एक प्रोफाइल है AI जो कि एकदम रियल दिखती है और उसकी प्रोफाइल आप देखोगे तो यू विल लाइक कितनी सुंदर है ये. सो AI जनरेटेड पर्सनालिटीज सीधे प्रॉम्प्ट करके बनाई जाती हैं और शॉकिंग पार्ट ये है कि वो ऑलमोस्ट अपने सब्सक्रिप्शन से मतलब जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं उससे वो अर्न करती है अराउंड 4800 रियाल्स मंथली. उसके अलावा ब्रांड कोलैबोरेशन और बाकी सब चीज़ें अलग. मतलब फॉलोअर्स रियल हैं लेकिन क्रिएटर मतलब वर्चुअल है. ये इन्फ्लुएंसर कैसे बनाते हैं भाई प्रॉम्प्ट से, AI टूल से, डिजिटल पर्सनालिटी क्रिएशन से? और मुझे तो ऐसा लगता है भाई मुझे भी यही सीखना है. जिसने इसे बनाया होगा चाहे लड़का हो या लड़की उसे पता है कि एक्चुअली लोगों को क्या देखना पसंद है. ठीक है एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की और हमेशा वो साड़ी पहनती है, कंटेंट इंगेजमेंट होता है, मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो गया, रियलिटी और वर्चुअल का डिफरेंस ब्लर हो रहा है यार धीरे धीरे. अब सवाल ये है कि आप किसी AI इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे क्योंकि वो परफेक्ट होती है, क्योंकि वो टायर्ड नहीं होती और क्योंकि वो मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन क्या वो रिलेटेबल है ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा 3311063 पर. एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो भाई दो मैचेस होने वाले हैं आज, पहला तो हैदराबाद वर्सेस कोलकाता और दूसरा फिर होने वाला है भाई शुभमन गिल यानी कि गुजरात को आज तो ये जिताएंगे या फिर प्रभ सिमरन जो है वो पंजाब का और मान बढ़ाएंगे। सो दो मैचेस हैं गुजरात वर्सेस पंजाब और पहला है हैदराबाद वर्सेस कोलकाता। दिस फर्स्ट मैच इज अबाउट टू स्टार्ट थोड़ी ही देर में और दूसरा मैच जो है वो शाम को 5 बजे कतर टाइम के हिसाब से स्टार्ट होगा। वी विल टॉक अबाउट दैट, पर आप मुझे ये बताओ कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी और इस वीकेंड पे आपने कौन से मैचेस देखे हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। बाय द वे कल का जो मैच था चेन्नई वर्सेस मुंबई, उसमें चेन्नई ने अपना जो टारगेट था 160 रन का वो सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर 18 ओवर एक बॉल में खत्म कर दिया। अब चेन्नई की उम्मीद कायम रहेगी या मुंबई की मुश्किलें ये तो थोड़ी देर में बताती हूं आपको। बाय द वे आप मुझे बताओ कि इस फ्राइडे और सैटरडे में जो निकल गया उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट क्या था, आपने क्या यू नो चेकआउट किया है OTT पे। बाय द वे मैंने कल कपिल शर्मा का शो देखा सबसे पहले, दूसरा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने चेकआउट की हैं। आई विल टेल यू इन अ वाइल। आप सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311106।

0: भाई ईद की जो तैयारियां हैं, जो शॉपिंग है वो शुरू हो गई है और एक परफेक्ट जगह भी मिल गई है, तो मैंने सोचा आपको तो बताऊंगी। बाय द वे वीकेंड पे मैंने एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन आपके लिए अभी लेकर आई हूँ। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। सुताज हिजत ईद फेयर जो है 2026 चल रहा है DCC में टिल 5th of May, मतलब दो ही दिन बाकी बचे हैं। सो अगर आप इन दो दिनों में जाना चाहते हो तो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुला हुआ है। सो बेसिकली आई नो कि अब तो वीक स्टार्ट हो गया है और छुट्टियां भी खत्म हो गई, वीकेंड खत्म हो गया, सो यू कैन गो टिल 10 PM, मतलब शाम को ऑफिस के बाद भी आप जा सकते हो। यहाँ आपको क्लोथ्स, एसेसरीज, गिफ्ट सब कुछ मिल जाता है। ईद सिर्फ ना बेसिकली एक फेस्टिवल नहीं होता, पूरा प्रिपरेशन और एक्साइटमेंट के साथ होता है, और इस फेयर का जो वाइब है वो बहुत कलरफुल, फेस्टिव और फुल एनर्जी वाला है। सो शॉपिंग ना यहाँ काम नहीं बल्कि आपको एक्सपीरियंस लगेगी एंड यू विल रियली लाइक इट। सो यू कैन गो एंड चेक आउट DECC, और यहाँ पर जाने के लिए तो मेट्रो भी बहुत ईजिली मिल जाती है। सो या यू कैन चेक आउट। सो अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे अफोर्डेबल टैक्स फ्री कंट्री की, जो कि ऑफकोर्स कतर इसकी टॉप 6 में है। सो यू डोंट गो एनीवेयर, सुन रहे हो रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: इन एसोसिएशन विद होम स्टार अस, वी

सो कल चेन्नई का मैच था और चेन्नई के जो प्रशांत हैं उनका इस कल के मैच में पहला ओवर किसी बुरे सपने की तरह था। मैच का पांचवा ओवर फेंकने आए प्रशांत को रायन रिक्लेटर ने 3 छक्के जड़ दिए और रिक्लेटर ने तीसरी बॉल पर 76 मीटर का स्लॉग स्वीप लगाया और लास्ट में 2 बॉल पर लगातार 2 छक्के। मतलब ये तो उनके लिए ऐसा हो गया था ना कि उनकी शक्ल देखने लायक थी। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि जीते कोई भी मैच इंटरेस्टिंग होना चाहिए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। और अगर आज के मैच की बात करूँ तो आपको पता ही है थोड़ी देर में हैदराबाद वर्सेस कोलकाता ऑलमोस्ट शुरू होने को है और फिर शाम को होने वाला है दूसरा मैच जिसमें या तो शुभमन गिल जो है वो गुजरात को जिताएंगे या फिर प्रभ सिमरन जो है वो पंजाब को मान बढ़ाकर ऊपर लेकर आएंगे। सो ये तो हमें शाम को ही पता चलेगा। बाय द वे हु इज योर फेवरेट टीम, नंबर है 3311063, फटाफट से व्हाट्सएप करके बताओ। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। Is something.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tatkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

यार समटाइम्स ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ कि अगर मेरी फैमिली कभी बोलेगी कि हमें रिलोकेट करना है, तो मैं उनसे बोलूंगी कि कतर एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन रहा है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हूँ, और दूसरा कतर को 2026 में 6th मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स फ्री कंट्री रैंक मिल गया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। सो भाई टैक्स फ्री का मतलब ये नहीं होता कि बस सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं है, अर्निंग्स डायरेक्टली आपको मिलती है, और कॉस्ट फैक्टर क्या है, फ्यूल अफोर्डेबल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, और इनकम सेव करना ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेम सैलरी किसी टैक्स्ड कंट्री में लेते हो तो डिडक्शन ज्यादा होते हैं, लेकिन कतर में वॉट यू अर्न mostly what you keep, right? So, मुझे ऐसा लगता है कि बस एक बार मेरी फैमिली मुझे कह भी कहीं रिलोकेट होना है और मैं फटाफट से उनसे कहूं कि ठीक है मैं फटाफट से आपकी टिकट बुक करती हूं और आप आ जाओ, क्योंकि एक तो फैमिली के साथ रहने का ना अलग ही मजा है, और दूसरा जब आप ऐसी चीजें पढ़ते हो कतर के बारे में तो आपको लगता है यार यू आर एट द बेस्ट प्लेस, राइट? सो आप मुझे बताओ कि आपको कतर की कौन सी चीज है जो बेस्ट लगती है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: Have you heard about FAFO parenting? भाई बड़ा ही न्यू ट्रेंड है. पेरेंटिंग ट्रेंड्स भी अपडेट हो रहे हैं. मतलब बस मैंने तो सुना था जेंटल पेरेंटिंग के बारे में. भाई आज के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को बहुत ही जेंटल तरीके से ट्रीट करते हैं. लेकिन पेरेंटिंग ट्रेंड में कुछ नई चीजें आ रही हैं. पहले स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होती थी, फिर जेंटल पेरेंटिंग और अब फाफो पेरेंटिंग. दैट मीन्स फूल अराउंड एंड फाइंड आउट. मतलब बच्चों को हर चीज पे स्टॉप नहीं करना, बल्कि कभी कभी उनसे एक्सपीरियंस करने उन्हें वो देना है वो सब जो वो मांग रहे हैं. यू आर लिस्टिंग रेडियो 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है. मतलब मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ. एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ. सो चाइल्ड जिद करते हैं मुझे खुद करना है, राइट? चाहे वो कोई भी ऐसी चीज हो, खेलने जाना है या उनको किचन में कोई काम करने का मन है, तो पेरेंट उन्हें अलाउ करते हैं. और जब मिस्टेक होती है तो लर्निंग नेचुरली हो जाती है. हर लेसन समझना जरूरी नहीं है, कभी कभी फील करना जरूरी है, ऐसा कहा जाता है. मतलब सिर्फ थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है. एंड आई वॉज वंडरिंग कि भाई हमारे टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता था. हमें तो हर चीज पे एक चांटा पड़ जाता था और बताया जाता था कि ये नहीं करना है. मतलब करने का तो ऑप्शन ही नहीं होता था. सीधे अगर हम कुछ नया ट्राई करें तो एक जोर से चाटा पड़ता था. बाय द वे, आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है? जेंटल पेरेंटिंग या फिर स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, या फिर आप भी इस फाफो पेरेंटिंग के पार्ट बनने के बारे में सोच रहे हैं? यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूं मुस्कान. नंबर है 3311063. यू आर लिस्निंग, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात है. Cool song.

यार बॉलीवुड में वैसे तो जितने ट्रिवियाज लेकर आओ उतने मजेदार होते हैं, बट आज बात करते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की, मतलब एक ऐसी लव स्टोरी का बेंचमार्क जो राज और सिमरन यूरोप ट्रिप ट्रेन सीन मतलब सब कुछ बहुत ही अमेजिंग दिखता है। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम लाइफ मस्त है। भाई कोई शायद ही होगा जिसने ये मूवी नहीं देखी होगी। ओरिजिनली इसे डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और ये रोल जो है वो टॉम क्रूज को ऑफर करना चाह रहे थे। वो सोचो मतलब नॉट शाहरुख खान, टॉम क्रूज। यस इमेजिन दैट, एक NRI लव स्टोरी विद हॉलीवुड एक्टर। लेकिन फिर डिसीजन चेंज हुआ और राज का रोल मिला शाहरुख खान को, और उस वक्त शाहरुख खान ऑलरेडी रोमांटिक हीरो के लिए नोन नहीं थे, ठीक है। वो नेगेटिव रोल्स भी कर चुके थे और कास्टिंग इटसेल्फ वाज अ रिस्क, ठीक है। और फिर सिर्फ यही नहीं, फिल्म का एंडिंग भी ओरिजिनली डिफरेंट सोचा गया था। प्लान ये था कि राज सिमरन को भगा के लेकर जाता है, लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि सिमरन के फादर का जा सिमरन जा मोमेंट ही फिल्म का सोल बनेगा, और एक्चुअली बना भी, और वही सीन हिस्ट्री बन गया। सोचिए अगर कास्टिंग या एंडिंग थोड़ी सी भी डिफरेंट होती तो शायद बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी कभी मतलब हमें मिलती ही नहीं, पर हमें मिल गई है तो अब हमें याद तो करना पड़ेगा ना इसे। बाय द वे इट्स यू नो वन ऑफ माय फेवरेट मूवी। आप मुझे बताओ, जब आपको बॉलीवुड का कोई फेवरेट मूवी पूछी जाती है तो कौन सा नाम है जो सबसे पहले याद आता है? 3311063 इज माय नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

सो जाते जाते आज का एक लास्ट थॉट जो आपको बता के जाती हूँ, विच इज वेरी सिंपल, लेकिन अगर फील कर लिया तो काफी काम आ जाएगा. यू डोंट नीड टू रश दिस वीक, यू जस्ट नीड टू स्टे स्टडी. सो बेसिकली नया वीक स्टार्ट हो गया है, आज संडे है, प्रेशर बहुत है, टारगेट्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, प्लान्स हैं, और हम क्या करते हैं, सब कुछ एक ही दिन में अचीव करना चाहते हैं. लेकिन रियलिटी क्या है, कंसिस्टेंसी स्पीड या ज्यादा पावरफुल होती है. मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज करोगे तो आप रुक नहीं रहे हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग इनफ, राइट? सो वीक को रेस मत बनाओ, थोड़ा सा यू नो रिदम की तरह राइमिंग करके उसको इंजॉय करके जियो. एंड आई विल से कि आई नो बॉस का बहुत प्रेशर होता है, हर दिन आपके पास मेल्स आ रहे होते हैं, मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपके खुद के मन में चल रहा होता है कि यार ये टारगेट अचीव नहीं किया तो क्या होगा, बट देन काम तो काम है ना, चलता रहेगा. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट, और आपको हर चीज बहुत ही मन लगा के अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके करनी है. फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, कल मिलते हैं सुबह 10 बजे लाइफ मस्त है लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: मैं हूं अनिल कपूर. रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
2: रेडियो ऑलिव. हम नंबर वन.
4: ऑलिव म्यूजिक मैराथन. एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने.

टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Music Marathon. Ek ghanta. Non-stop back-to-back gaane.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: Danisha.
1: Danisha. कैलाश खेर साहब की आवाज में बहुत ही सुंदर गाना सही ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM. तनिषा आगे जो आपके साथ ओलिवी चार्ज लेकर अ वेरी गुड आफ्टरनून मेरी जान. नया हफ्ता, पहला हफ्ता है मे मंथ का, मे थर्ड है आज. कैसे हैं आप, क्या हाल चाल है, एंड व्हाट्स द वाइब फॉर दिस संडे बताइए मुझे. मैसेज कीजिए 3311063 पर. अलॉन्ग विद दैट ये भी जानना चाहूंगी वीकेंड पे क्या किया आपने. अरिजीत सिंह की आवाज में कोनी चिवा
2: चन्ना लिख के मैं तेरा नाम.
1: एंड दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इन द वॉइस ऑफ आतिफ असलम.

ऐश्वर्या राय क्या सुंदर लगी है इस पूरी मूवी में, एंड स्पेशली इन दिस ट्रैक, ब्यूटिफुल. सो ऑल दीज अमेजिंग ट्रैक्स आर लाइंड अप फॉर यू इन दिस आवर. और भी बहुत सारे सरप्राइजेस हैं बीच में, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके हालचाल, कैसे हैं आप और क्या किया वीकेंड पे, बताइए मुझे. फिर कुछ देर के बाद आती हूँ और मैं भी बताऊंगी आपको कि मैंने क्या किया कल. फिलहाल सुनते हैं अरिजीत सिंह और मेघना मिश्रा की आवाज में एक दिन मूवी से बहके यार. स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Hi Radio Olive 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Radio. Stay tuned.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी. कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर.

0: तनिषा
1: कनाल कांजावाला और सुनिधि चौहान की आवाज में भागम भाग से तेरे बिन ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन योर रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और मैंने पूछा था कुछ देर पहले कि क्या किया वीकेंड पे एंड सब ठीक था कि नहीं, तो सरिता जी का बड़ा प्यारा सा मैसेज आया, आइए सुनते हैं।
2: गुड आफ्टरनून आरजे तनिषा, बहुत अच्छा आपने गाना बजाया, बहुत ही अच्छा लगा। मैं मैसेज नहीं डालती हूँ आपके प्रोग्राम में, बट डेली सुनती हूँ। आज बहुत अच्छा लगा कैलाश खेर का जो आपने गाना बजाया, एंड वीकेंड का आपने पूछा है, वीकेंड तो पार्टी के नाम यही होता है वीकेंड में। माय नेम इज डॉक्टर सरिता सिंह, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सरिता जी, एंड रोज सुनती हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा, पर कभी कभी मैसेज भी बढ़िया है। आप बेटर मुझे कॉल कर दिया करें, एकदम ऐसे वन ऑन वन हमारी कॉन्वर्सेशन हो जाएगी और भी बेहतर रहेगा। और वीकेंड पे पार्टी करी है तो उस मूड को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए एक बहुत ही कमाल गाना आपके लिए भेज रही हूँ, हिमेश रेशमिया की आवाज में मुझको याद सताए तेरी, ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम, बिंदास मेरी जान।

0: Presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और Mega draw ticket.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: देर लगा और हो जा रिचार्ज
4: ऑलिव रिचार्ज
5: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
4: ऑलिव रिचार्ज
6: इन एसोसिएशन विद
7: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, we are saving more, turns dreams into reality. Commercial Bank's 5 million riyals dream. Dream bigger.

0: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
2: 106.3 एफएम रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
3: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesha, aapke saath Olive Recharge chal rahe hain yahan par.
1: TikTok
0: में Instagram की बात करते हैं. So, कुछ वक्त पहले जो एडम मोसेरी हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि अब जो रीच है आपकी प्रोफाइल की वो हम रीपोस्ट पे के बेसिस पर डिसाइड करेंगे. वेदर यू आर रीपोस्टिंग अदर पीपल्स कॉन्टेंट, जितना ज़्यादा आप रीपोस्ट करोगे दूसरों का कॉन्टेंट आप उतने ज़्यादा विजिबल होगे. लेकिन अब उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि नहीं, वे गोना चेक आउट कि ओरिजिनल कंटेंट कौन सा है उनका जो भी क्रिएटर है. और ज़्यादा से ज़्यादा अगर दूसरों का ही कंटेंट रिपोस्ट किया जा रहा है तो उनकी रीच कम हो जाएगी. ऑल्सो अभी तक वो सिर्फ रील्स पे फोकस कर रहे थे, अब वो आपके पोस्ट यानी पिक्चर्स पर भी फोकस करेंगे. कैरोसेल पोस्ट कर रहे हैं उस पर भी फोकस करेंगे एंड उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपके नॉन फॉलोअर्स को कितना ज़्यादा उनकी फीड में नजर आएंगे. सो देख लो, अगर बहुत ज़्यादा रिपोस्ट कर रहे थे तो थोड़ा कम कर दो, ठीक है, स्टोरी वगैरह भी डाल दो, पर्सनल मैसेज कर दो यार, लोगों को दिखाना है तो. बस ध्यान रखो अपनी एल्गोरिदम का. और सुंदर रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क। रेडियो ऑलिव नंबर वन।
2: हमने लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ऑलिव रिचार्ज।
4: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
5: ऑलिव रिचार्ज।
6: इन एसोसिएशन विद
7: होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, द रिस्पॉन्सिबल जूलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
8: कमर्शियल बैंक, वी आर सेविंग मोर, टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम, ड्रीम बिगर।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट ready for this।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ Olive Eater चल रहा है अब और कदर कैलेंडर ने मई मंथ के सारे इवेंट्स बता दिए हैं और भाई बिजी रहने वाला है ये मंथ. सो बहुत सारी चीजें हो रही है. देर इज ट्रैवलिंग वाटर सर्कस फॉन्टाना हो रहा है. दोहे इंटरनेशनल बुक फेयर होने वाला है मई 14 से लेकर 23 मई तक. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. लास्ट ईयर मैं गई थी वहाँ पे एंड यू गेट टू नो सो मच यू नो. एंड इतनी कमाल कमाल की बुक्स होती है. देन यू रियलाइज कि यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है. बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को बाकी है. सो डू चेक दैट आउट. अमेर कप फाइनल होने वाला है मई 9 को खलीफा स्टेडियम में. देन बहुत सारे स्पोर्ट्स और फिटनेस इवेंट भी हो रहे हैं जैसे GCC गेम्स, QTR एक्वाथलॉन एंड जिम क्लैश का फाइनल होने वाला है. सो ये सब भी हो रहा है. अलॉन्ग विद दैट आर्ट कल्चर की एग्जीबिशंस भी बहुत सारी चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं फायर स्टेशन पे, मथाफ में, बहुत सारे म्यूजियम्स में. चेकआउट कीजिए इफ यू आर अ आर्ट एंथुजियास्ट. एंड अ लॉट ऑफ कम्युनिटी एंड एंटरटेनमेंट थिंग्स आर ऑल्सो लाइंड अप जो कि फैमिली फ्रेंडली है. बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों से लेकर बड़ों सबके लिए. और कतर इकोनॉमिक फोरम होने वाला है मई 12 से मई 14 तक, जहां पर ग्लोबल लीडर्स आएंगे, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आएंगे. सो इफ यू वॉन्ट टू कनेक्ट, इट इज अ रियली गुड प्लेस टू नेटवर्क एंड मीट दोज इंस्पिरेशंस. सो इतनी सारी चीजें हो रही है. अब ये ना कहना कि यार समझ नहीं आ रहा मई में मैं करूँ क्या. बहुत कुछ है करने को. चेकआउट करो जरा और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव

0: Denisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. Aur bahut sari videos dekhiyenge abhi social media pe jo bahut rotate ho rahi hai. Dugong Adventure World ki, which is an outdoor theme park event, aur 900 park mein ye ho raha hai. Yahan pe bahut sari amazing rides hain, live shows ho rahe hain, performances hain, mascots hain, interactive activities hain. बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए इट इज फुल फैमिली फ्रेंडली. और यू नो आप वहाँ पे फूड कियोस्क मिलेंगे तो खाना भी बढ़िया एंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे इवेंट बूथ्स हैं, फेस्टिव एटमॉस्फेयर, फुल लॉन, मजेदार ऐसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस होने वाला है. तो देरी किस बात की, 9th मई तक ये चलने वाला है. और वीकडेज का टाइम संडे टू वेंसडे का रहेगा, 4 PM से लेकर 10 PM. और वीकेंड्स पे दैट इज आज से लेकर सैटरडे तक शाम 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक. अगर आपको इसकी टिकट्स चाहिए तो फटाफट से जाइए स्नूनू एस सिटी पर, वहां पर इसकी टिकट्स एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं. अलोंग विद दैट यू शुड गो ऑन आर सोशल मीडिया radioolive.qa, क्योंकि वहां पर चल रहा है कॉन्टेस्ट जहां आप जीत सकते हैं डुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड के टिकट्स. यस, गो एंड चेक इट आउट और सुनते रहिए रेडियो ओलिव. जियो बिंदास.

0: डेलिशा डेलिशा।
1: हीर का कहना है कि अगर सैड फील कर रहे हो तो डांस कर लो, मेरे साथ तो यही हुआ, डांस किया और ऐसे मूड एकदम बूस्ट हो गया यार। यार लिसनिंग टू रेडियो ऑल एवर 6.3 एफएम, तनीषा आपके साथ ऑल एवरी चार्ट चल रहा है यहाँ पर। और आज T20 में जो मैच इस वक्त चल रहा है वो हो रहा है हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, और कोलकाता को टारगेट मिला था 165 रन्स का एंड फिलहाल उनका जो स्कोर है वो है 131 एक विकेट के साथ। 35 रन्स चाहिए 5.2 ओवर्स में, बहुत इम्पॉसिबल सा स्कोर तो नहीं है, मतलब 34 रन्स इन 32 बॉल्स आई थिंक हो सकता है अगर करना चाहे तो।

शाहरुख खान की जो नई पिक्चर ऐसे रोटेट हो रही है इंस्टाग्राम पे किंग मूवी के सेट से, क्या लग रहे हैं यार वो कमाल, जिसने भी स्टाइलिंग की है ना उसको 10/10। और दिलजीत तो आई थिंक पूरे 12 महीने कहीं ना कहीं छाए ही रहते हैं, उनका तो राज है ही फुल ऑन सोशल मीडिया पे। इस गाने में जो करिश्मा कपूर ने ड्रेस पहनी थी ना, आई हैड दैट ड्रेस जब मैं छोटी थी, और फिर मैं सोचती थी अरे मैं तो करिश्मा कपूर हूँ एंड यू नो ट्राइंग टू डांस ऑन दैट सॉन्ग, बहुत बुरी तरह से फील होती थी। सो इसी बात पे बढ़िया गाना सुनते हैं, बैरन ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूँ जैकी श्रॉफ.
3: जैकी श्रॉफ
2: रेडियो 106.3 जियो बिंदास. ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
3: कमर्शियल बैंक वी आर सेविंग मोर टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी कमर्शियल बैंक्स 5 मिलियन रियाल्स ड्रीम बिगर

Alicia. Arijit Singh aur Harshdeep Kaur ki awaaz mein Rais movie se Zalima only on Radio Ale 106.3 FM. Dinesha aapke saath. All every chart chal raha hai yahan par aur waqt ho chuka hai. So lame jams का आज का मेरा सवाल है, अगर बिल्ली के पास एक कैट के पास बहुत सारे पैसे आ जाएं तो उसे क्या कहेंगे? जवाब सिर्फ एक वर्ड है, अंग्रेजी का शब्द है, हम सब एस्पायर करते हैं वो बनना. सो अगर एक बिल्ली के पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो उसे क्या कहेंगी, ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए और बताइए फटाफट से. और अभी जो मैच चल रहा है हैदराबाद और कोलकाता के बीच में, 143 रन्स पे 2 विकेट्स हो चुके हैं एंड बहुत ऐसे कट टू कट, यू नो, लाइक 26 बॉल्स पे 26 रन्स चाहिए. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तब तक आप मेरे लेम जैम्स का सवाल का जवाब सोचिए, अगर एक बिल्ली के पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो उसे क्या कहेंगे. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: Delisha. Delisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinesha, आपके साथ Olive Recharge चल रहा है यहाँ पर. और ये जो गाना हमने सुना ना, इसके स्टार्टिंग में कुछ weird से वर्ड्स हैं जो हमें लगता है कि वो किसी you know किसी अलग लैंग्वेज के हैं, हिंदी या इंग्लिश के नहीं है. पर एक्चुअली वो जो लाइन है ना, कम टू मी भूल जाए सारा जहाँ, उसको रिवर्स करके डाला हुआ है. जी हाँ, क्रिएटिविटी देख रहे हैं आप. सलेम जेम्स का आज का मेरा सवाल था कि बिल्ली के पास बहुत सारे पैसे आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे. आई हैव गॉट सो मेनी आंसर्स ओवर हियर और मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया गया है. जी हाँ, राहुल कासिम एस पी सा, इतना ही लिखा है उनके नाम में. एंड इद्रिस देव और हुसैन, सबके सही जवाब आए हैं. यस, द करेक्ट आंसर इज बिलियनेयर. एंड वी ऑल एस्पायर टू बी वन, एंड इंशाल्लाह हो जाएगा वो भी. बट थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन माई लेमनेस. दिल खुश कर देते हो यार आप इसी बात पे. आपके लिए एक कमाल गाना ओनली ऑन रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान.

0: Denisha.
1: Denisha. You're listening to Radio Alay 106.3 FM. Denisha, aapke saath. और रिचार्ज चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है मेरे जाने का, मेरी जान लौट के आऊंगी कल दोपहर 2 बजे. तब तक आपने अपना रखना है ढेर सारा ख्याल, ठीक है? और अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से जाइए radio.qsd हैंडल फॉलो कर लीजिए सारे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, एवरीवेयर, सो दैट आप कुछ भी मिस ना कर जाएं. एंड इफ देयर इज एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर विद अस, 3311-1063 इज द नंबर. वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू. आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं हमें, हम सुनने को तैयार बैठे हैं मेरी जान. आप दिल की बात करो तो. बाकी अपना ख्याल रखिए, कल मिलते हैं दोपहर 2 बजे. सुंदर रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास मेरी जान.
0: रेडियो

0: Radio Olive, your happiness frequency. 106.3 Radio Olive, Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड win.

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिन

बिल्कुल कुछ ऐसे ही हाल है यार, छोड़ के आई तेरे पास सॉस मनो को। मानो को छोड़ के जहानों को, मेरे लिरिक्स हमेशा गलत हो जाते हैं लेकिन भावनाएं बिल्कुल सही रहती हैं। मैं गरीब सोने की तरह की हालचाल सचिवाल सिमरन कौर आपके साथ जबरदस्त इवनिंग शो भी शुरू हो चुका है। 5:55 तो फिर से हालचाल पूछने का सिलसिला शुरू करते हैं, आप लोगों से बातें करने का सिलसिला शुरू करते हैं, म्यूजिक का सिलसिला शुरू करते हैं। मिर्ची लगती है तो ये गाना

राज बेटा अब तू सामने मत आना यार, मुझे नहीं मिलना यार, बहुत देर हो गई है। क्या बात है यार, अपने ये इन चार घंटों के लिए दिल तो बिल्कुल आपका हो गया। एक ऐसा आपका आज का दिन 3311063 पर आपकी गुड इवनिंग वाले मैसेजेस के साथ मुझे भेज दीजिए। एंड गुजरात और पंजाब का मैच चल रहा है, उसकी भी रिपोर्ट दूंगी सर। लीजिएगा ना, आपके लिए है जवानी इश्क होना है, व्यागर वादो जी है इस गाने का नाम, मीका और असीस कौर की आवाज। किस किस को शादी करवानी है बताओ जरा, कौन कौन जा रहा है जिसकी शादी होनी चाहिए? अरे जैसे पूछ रही हूँ, अगर किसी की शादी होती पक्की हुई तो बता दो यार। 3, 2, 1 एंड गो। गाना

0: Radio Olive. 106.3 Radio Olive. Geo Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hello, Namaskar.
4: Mamma Mia, main hu Chanky Pandey aur aap sun rahe ho mujhe. Radio Olive

0: करते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

0: मिर्ची लगती है तो इंसान क्या करता है, इंसान पानी पीता है। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मुझे सबसे एक्स्ट्रा मिर्ची लगती है, मतलब मेरी बैंड बच जाती है अगर मैं थोड़ी सी भी मिर्ची जो है वो खा लूं। मिर्ची मेरे से बिल्कुल भी झेली नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूं कि वो एकदम अलग लेवल की मिर्ची जो है खा लेते हैं, और भी मतलब खाने में इतनी मिर्ची तेज होगी, साथ में उनको हरी मिर्ची भी चाहिए। माय गॉड कैसे खा लेते हैं। मुझे मेरी माँ याद आती है, आई रिमेम्बर हमारे घर पे ना मेरी मम्मा को ना बहुत शौक था, मम्मी ने टमाटर मिर्ची पुदीना ये पता नहीं क्या धनिया वनिया सब वो सारी सब्जियां वगैरह, बहुत बड़ा गार्डन था हमारा, मम्मा को बड़ा शौक था ये सारी चीजें करने का। और वो जितनी भी सब्जियां हरी बन रही हैं वो घर से ही आती थी और बाहर से मम्मा को शौक नहीं था, मम्मी खुद ही सारा ध्यान रखती थी, है ना। सो आई रिमेम्बर उनको हरी मिर्ची बहुत ज्यादा पसंद थी। दोपहर का टाइम मुझे याद होता है, वो स्कूल वाले दिन भी याद आते हैं जब मम्मी लंच करती थी, खाना खाते थे और स्पेशली जाती थी वो अपने गार्डन से फेवरेट अपनी हरी मिर्च बड़ी बड़ी लंबी लंबी दो तीन तोड़ के लेके आती थी, धो के साथ में वो ऐसा प्लेट में सजा के एक बाइट ले रही है और एक बाइट मिर्ची की ले रही है। भाई साहब एक दिन मैंने इसे शौक शौक में बोला कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। भाई छोटा सा एक छोटा सा टुकड़ा ही मैंने खाया होगा, अभी चबाया भी नहीं होगा, जो भागी हूं मैं पूरे घर में। भाई साहब लोग कैसे स्पाइसी चीजें जो है वो खा लेते हैं। अभी फिलहाल मैच की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब और गुजरात का मैच चल रहा है। पंजाब ने पहले खेलते हुए 3.2 ओवर कंप्लीट कर लिए हैं, 25 का स्कोर हो गया लेकिन 2 विकेट पंजाब के जा चुके हैं। सो यस मैच के ये हाल है। और अहमदाबाद में मैच जो है वो आज का खेला जा रहा है, 46th मैच में आपको सारी अपडेट देने वाली है, तुसी टेंशन ना लो। फिर क्या है, तू भी चको फिर
1: G20 स्कोर अपडेट presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi ab bilkul paas. Madar Kadim Bakra VFS Google ke site Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today. Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
2: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Ab suniye, Olive ka zabardast hit. Zabardast hit.

0: I love you, Sokilo.
1: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please you.
2: Simranji, I love you, Sokilo.
1: You are very good and we never miss your show.
3: Your program is very good and you listen to it. MashaAllah, so energy-full voice. You listen to it, tension is removed. It's fun.
0: Simranji, I love you a lot. RJ Simran ke saath.
4: टफ काम और भी आसान कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्नल ग्रुप नाउ
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट

0: दी। बस फिर दिल जवान रहने की बातें जो है वो जरूर होती है। मैं कभी सोने की तरह की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर यादव के साथ। थ्री इडियट्स फिल्म की बात करें ना, ये कॉन्सेप्ट, ये फिल्म, ये कैरेक्टर्स, ये अभी तक हमारे दिल में जो है वो जवान है। और हर बंदा जो है वो थ्री इडियट्स का चाह रहा था कि भाई सीक्वल आना चाहिए। और अब जो है अनाउंस हो चुका है कि थ्री इडियट्स का जो सीक्वल है वो आने वाला है, बट डेट अभी तक जो है वो डिसाइड नहीं हुई है कि ये कब होने वाला है। बट यस, आमिर खान, करीना कपूर, आर माधवन, शर्मन जोशी जो है वो इस फिल्म में 10 से 15 साल बाद की स्टोरी जो है वो दिखाई जाने वाली है। वाकई में यार क्या कमाल की फिल्म थी ये, बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी मोटिवेशन जो है इस फिल्म से मिली है, एंड ऑल टाइम फेवरेट एक फिल्म जो है वो आप बोल सकते हैं। बट यस, सीक्वल भी आएगा अब।
1: दिल

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make you drive golden with
5: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
6: Supported by Homes R Us. We complete your home.

अर्जियां हैं, चाहे कुन फाया कुन है और भर दो झोली, है ना, इसको सुनते हुए एक अलग ही लेवल पे आप कहीं पे चले जाते हो जहां पर आप जो है ना वो वापस लौटना नहीं चाहते, क्योंकि इनको सुनते सुनते, इन कवालियों को सुनते सुनते जो सुकून मिलता है ना भाई साहब, उसका मजा ही अलग होता है। चलिए मजा लीजिए रेडियो ऑलिव के म्यूजिक का और मेरी बातों का और जबरदस्त इवनिंग्स का। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव को और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: Radio Olive, your happiness frequency.
1: 106.3 Radio Olive. Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31 मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

0: करते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

0: फुटबॉल फैंस को ना बताना नहीं पड़ता कि आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी तैयार रहते हैं अपने कतर में। और इस बार तैयारी है आमिर कप के फाइनल की। देखिए, आमिर कप के फाइनल की टिकट्स अगर आपने अभी तक बुक नहीं करी हैं तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि 9th ऑफ मई को शाम को 5:30 बजे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम में ये फिनाले जो है वो होने वाला है। मेक श्योर कि आप इसकी टिकट बुक करने के साथ साथ, जो कि आप कहां पे जाके कर सकते हैं, www.qfa.qa। जी हाँ, आप कैटेगरी कोई भी चूज कर सकते हैं। कैटेगरी 1 है 50 रियाल, कैटेगरी 2 है 30 रियाल, कैटेगरी 3 है 10 रियाल। सो बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो आपको अपने हिसाब से मिल जाएगी, लेकिन मैच में हल्ला करने का मजा और अपनी टीम को सपोर्ट करने का मजा ही अलग है। और सबकी निगाहें जो है ना वो आमिर कप की ट्रॉफी पे टिकी होती है कि भाई ये ट्रॉफी किसके हाथ लगने वाले है। बाय द वे, इससे पहले कि ये किसी और के हाथ लगे, ये आमिर कप का जो ट्रॉफी टूर है वो कल हमारे ऑफिस में होने वाला है। सो ये ट्रॉफी हम भी अपनी आंखों से देखने वाले हैं और फोटो भी खिंचवाने वाले हैं। ऑफकोर्स ये सारी चीजें आपको हमारे सोशल मीडिया पे भी मिलेगी। मेक श्योर कि आप हमारी वीडियोज और स्टोरीज चेक करिए। ये जो आमिर कप का ट्रॉफी टूर होगा वो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल मैच देखने आप 9th ऑफ मई को जरूर पहुंच जाइए, शाम को 5:30 बजे खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम पर। सिमरन कौर आपके साथ, मैं अजीत जी हूं बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है।

0: you are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please you.
1: Simranji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: Your program is very good and it's fun to listen to. Mashallah, it's a so energy-full voice. It's fun to listen to. It's fun to listen to.
3: Simranji, I love you a lot. RJ Simran ke saath.
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलीनियर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
4: तो फिर सोचना क्या अगले मिलीनियर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ
8: Zabardast evening. Make you drive golden with
9: Joy Alukas, world's favorite jeweler.
10: Supported by Homes R Us. We complete it.

हमारे सोनिया नहीं बनना ना मनो यार, कोई टेंशन नहीं है, बस उतना ही प्यार काफी रखोगे आप, मुझे सुनो यार, बस मेरा शो कभी मिस ना करो, उतना प्यार चाहिए जितना प्यार मैं आपको करती हूँ, आपको तो पता भी नहीं है। वैसे मैं बताती हूँ हर रोज कि आपसे 100 किलो वाला प्यार है यार, अनलिमिटेड एंड डीप लाइक द ओशन। 6:32 एंड 45 सेकंड हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी पे। मैच में क्या चल रहा है यार, ये क्या ही चल रहा है यार। ओके सो पंजाब और गुजरात का मैच चल रहा है। पंजाब की धाड़ धाड़ विकेट जो थी वो स्टार्टिंग में गिरी और 17.3 ओवर कंप्लीट होने के बाद पंजाब का स्कोर है 140। 6 विकेट जो है वो ऑलरेडी जा चुके हैं। सो ये है मैच के हाल, लेकिन गानों के हाल मैं आपको बता देती हूँ। ऑलिव रिवाइंड में आज

0: गाना जो है वो वाकई में इस गाने की तरह यूं ही नहीं है यार, कोई ना कोई मकसला, कोई ना कोई मकसद जो है वो हर इंसान का आपकी जिंदगी में होता है। कोई आपको सिखा के जाता है किसी से, आप जो है वो कोई आपसे जो है वो सीखता है ना। हर किसी इंसान की आपकी जिंदगी में जब एंट्री होती है किसी भी इंसान की, तो उसका कोई ना कोई जो मकसद जो है वो जरूर होता है। 6:33:45 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, आप समझ गए, मैंने समझाने में आपको ज्यादा टाइम लगा दिया क्योंकि आपसे प्यार बहुत सारा है, समझ रहे हो। अगला गाना आपके लिए आ रहा है बस थोड़ी ही देर में।
1: Presented by Luke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadim, Vakra, VFS Global K site, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
2: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
3: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.

0: रेडियो ऑन योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
2: आरजे सिमरन के साथ।
3: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
4: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
5: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट।

सच्ची बात है, मेरे बगैर दिल लगना भी नहीं चाहिए, मेरी जरूरत रहनी चाहिए। मैं जितना आपसे प्यार करती हूँ, आपको आपकी तरफ से भी तो मुझे उतना चाहिए ना अटेंशन कि हाँ आप भी मेरे से उतना ही प्यार करते हो यार।

0: नहीं मारता है बेबी। 6:49 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, सिमरन गौर आपके साथ है। चलो अभी एक मैं जेंजी लिंगो के बारे में बता दी, जिसमें जेंजी डेटिंग टर्म में एक चीज आती है। जेंजी टर्म जो है वो डेटिंग टर्म में एक होती है ब्रेड क्रमिंग। ब्रेड क्रमिंग जो है वो आप क्या है कि किसी को आप बहुत कम अटेंशन दे रहे हैं लेकिन उसको अपने साथ जोड़ के रख रहे हैं। लाइक उनको मैसेजेस भेज दिए कि बात बात कर ली ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ वो इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई इंटेंशन नहीं होती इन लोगों की कमिटमेंट करने की, जिसको जेंजी जो है वो उनकी डेटिंग टर्म है ब्रेड क्रमिंग, जिसमें बस वो बात कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं लेकिन कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई ठीक है इट्स ओके, दूर दूर से बात बात हो रही है और कमिटमेंट नहीं है आपने कोई, बट मतलब मामला जो है जोड़ के रखेंगे बट कमिटमेंट नहीं देंगे। सिमरन गौरे आपके साथ, ठीक हो बिंदास, कुछ भी चल रहा है
1: रेडियो ऑलिव पर। Song of the hour. ये गाना।
0: अनिल जी का मैसेज आया, कहते हैं आपकी आवाज बड़ी प्यारी है यार, शुक्रिया यार, और क्या चाहिए लाइफ।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: You are listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
5: एम थापा जी का मैसेज आया, कहते सिमरन आपकी एनर्जी को 100 किलो प्यार. बहुत सारे हार्ट बनाके भेजे हैं, थैंक यू सो मच यार. ये एनर्जी आप लोगों की वजह से है, ऐसे दुनिया अकेले मेरे में एनर्जी आ जाएगी. आप लोगों का प्यार, आप लोगों के मैसेजेस. 3, 2, 1 एंड गो.

0: जी
1: मैं मर जावा
0: जैस्मीन,
1: मैं मर जावा
0: जैस्मीन सैंडलेस की बहुत सारी वीडियोस जो है वायरल हो रही है उनके लाइव शो की, स्पेशली उनका एक गाना सतिंदर सरताज के साथ है, जाइए सजना। सो वो जहां पे भी लाइव शो कर रही हैं वो गाना गा रही हैं, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत सारे इमोशंस है उस गाने के। लेकिन एक चीज जो है मैं पर्सनली फील करती हूँ कि मैं उनकी एवरी अदर वीडियो जो देख रही हूँ जिसमें वो रोए जा रही हैं, मतलब कहीं पे भी कोई बात कर रहा है वो रोए जा रहे हैं, मुझे पता है मैं भी मतलब ओवर सेंसिटिव हूँ, मैं भी बहुत जल्दी जो चीजों में रो देती हूँ, लेकिन मतलब ऑन स्क्रीन बार बार उनको इस तरह से रोते हुए देखना थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, मतलब इतना क्या रोना है। बहुत प्यारी है जैस्मीन, मुझे बहुत पसंद है उनकी सिंगिंग एंड ऑल, मैम जिस तरह उनका बोल्ड नेचर है, और वो ऐसे रोते हुए हर वीडियो में देख रहे हो तो मेरे को लग रहा है कि भाई रो ही रही हैं वो पूरी वीडियो में, मुस्कुराती हुई ज्यादा अच्छी लगती हैं। अगर जैस्मीन, अगर आप मेरे को दुनिया के किसी भी कोने में सुन रही हैं, वैसे सुन सकती हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी सुन सकता है। अभी फिलहाल आप सुनिए मैच के हाल, पंजाब और गुजरात का मैच चल रहा है, पंजाब ने पहले खेलते हुए 164 रन का टारगेट दिया गुजरात के लिए, गुजरात अभी खेल रही है और पहले ओवर की 4 जो है वो बॉल फेंकी जा चुकी है और स्कोर हो गया है 10 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बाहर के माहौल को और चांद को देख, कल चांद और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, मैं ये नहीं बोलूंगी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि चांद खूबसूरत है ही, बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो बाहर अब चांद को देखते हुए गाना डेडिकेट कर रही हूँ, अगर आप ये चांद को देखते देखते गाना सुन रहे हैं वीडियो जरूर भेजना यार।
2: चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा ना ले चेहरे का नूर।
0: ये एक चीज है, ये फीलिंग से मैं कभी गेट ओवर नहीं होना चाहती चांद को देखने वाली।
3: T20 स्कोर अपडेट
4: Presented by
5: Duke's Cafe. Sweetness that hits straight to the heart. Dadar ki most loved kulfi, ab bilkul paas. Madar Kadeem, Vakra, VFS Global ke site, Oak Banafi, Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
6: Powered by Ahmed Al Maghribi Perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna. Ahmed Al Maghribi par chal raha hai. Buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
4: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
5: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
0: अब चांद की बात हुई थी तो ब्रेक के पार वो गाना तो आएगा ही आएगा, लेकिन चांद वाला एक और गाना भी है। आय हाय ये विसल कितनी सही लगती है यार, चांद मेरा दिल से, ये टाइटल ट्रैक।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Hi everyone, this is Benny Dayal here.
3: Olive Radio 106.3.
2: Jubindas.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: Radio Olive, I'm the number one.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
7: सिमरन के साथ।
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
9: जॉय आलूकास्ट, वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर,
10: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस, वी कंप्लीट योर होम।

चांद से पर्दा कीजिए हो गया हाँ, इट्स ओके। चांद को देखते देखते अगर आप ये गाना सुन रहे थे, वीडियो बनाई है तो रेडियो ऑलिव को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा, या फिर आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिए 3311063 पर। एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए। जुगोंग एडवेंचर वर्ल्ड जो है वो आउटडोर थीम पार्क है जो कि 900 पार्क में है, जिसमें मतलब आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, सब मतलब हर एज के लोग जो है यहाँ पर जा सकते हैं, जहाँ पर राइड्स होंगी, लाइव शोज हैं, परफॉर्मेंसेज हैं, मैस्कॉट्स हैं, इंटरैक्टिव एक्टिविटीज हैं। सो आप जो है खाने पीने का भी टेंशन मत दीजिए, क्योस्क बने हुए हैं वहाँ पर, ठीक है। सो एकदम फेस्टिव एटमोसफेयर है वहाँ पर, फैमिली फ्रेंडली, बड़ा ही मज़ेदार माहौल है। ये माहौल सिर्फ 9th of May तक है, मेक श्योर कि आप इसकी टिकट बुक कर लीजिए। इसकी टिकट जो है वो आपको स्नूनू पर मिल जाएंगी, ऑनलाइन स्नूनू SCT पर आप बुक कर सकते हैं। एंड इसकी टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जाने से पहले एक बार टाइमिंग जरूर देख लीजिएगा। वीकडे की टाइमिंग संडे टू वेंसडे शाम 4 से लेकर रात के 10 बजे तक है। वीकेंड्स की टाइमिंग थर्सडे एंड थर्सडे टू सैटरडे जो है शाम 4 से लेकर रात के 11 बजे तक है। सो मेक श्योर कि आप टिकट बुक कर लीजिए। लेकिन अगर आप फ्री जाना चाहते हैं तो रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाइए, वहां पर एक कॉन्टेस्ट जो है हमारे चल रहा है सोशल मीडिया पर, मतलब बहुत ही सिंपल से स्टेप फॉलो करके आप फ्री टिकट्स जो है वो जीत सकते हैं। तो फिर क्या बोलती पब्लिक।

0: You're listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
6: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कम

0: दोबारा कह रहे तुझसे दिल लगाऊं, फैमिली बनाऊं, यही तो इरादा है मेरा। अब रोमांटिक हाँ। 7:31 अपन तेरा 55 सेकंड स्टूडियो घड़ी पे। सिमरन कौर है आओ के साथ, और क्या है व्हाट द वायरल
1: रेडियो ऑलिव पर। What the viral? क्या बात है? RJ सिमरन के साथ। What the
0: viral? ये बात मुझे नहीं पता कि मैं लेट हूँ या फिर आप भी लेट हैं मेरी तरह। मुझे सबसे ज्यादा चीज जो थी वो इंस्टाग्राम पे खलती थी, जब मैं कमेंट कर देती थी और उसके बाद ओहो उसमें कुछ वर्ड गलत लिखा जाता था या फिर उसमें कुछ ऐड करना होता था तो मुझे पूरा का पूरा कमेंट डिलीट करके फिर दोबारा लिखना पड़ता था। लेकिन मैंने अब कुछ दिन पहले ये चीज देखी कि अब आप कमेंट पोस्ट करते हैं तो उसमें आप एडिट भी कर सकते हैं। यस, इंस्टाग्राम के कमेंट को अब आप एडिट भी कर सकते हैं, तो दोबारा से वो पूरा कमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। बेबी ट्राई नाउ।
2: दीवाना मैं चला उसे ढूंढने बड़े प्यार से।
0: और अभी के अभी हमने मेरे और सुदेव की शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है। वो वीडियो अभी के अभी अपलोड हुई है जिसमें तनीषा है और हमारी खुशबू भी है। सो जाके देखिए, और उस वीडियो में अगर आप कमेंट कर रहे हो और एडिट करने की जरूरत पड़ी तो वो ऑप्शन भी पता लग जाएगा आपको। और बताइएगा कितना गलत हुआ है यार मेरे साथ।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटोई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
7: जॉय आलूकास, वर्ल्ड्स फेवरेट शुगर,
8: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस। वी कम

0: जिनका बरेली के बाजार में सैंडल टूटता है, मैं रो देती हूँ मेरा सैंडल टूट जाए। भाई ये गाना गा रही है दीदी, यही होती है आपकी इनर पावर यार, कि आप हर सिचुएशन में जो है खुश रहो यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: जिंदगी में ना कोई लड़ाई जो है ना हम लड़ रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो टायर्ड हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि नहीं होंगी यार चीजें, ये चीजें, आप एक उस पॉइंट पे हो जहां पर आप एज पे हो, आपको लगता है कि यहां पे चीजें खत्म हो जाएंगी, यहां पे हम ब्रेक हो जाएंगे, यहां पे अब हम और नहीं सह सकते। बट अगर आप ऐसी सिचुएशन में लाइफ में चल रहे हो, मैं भी होता है, मेरा भी ऐसा टाइम आता है कभी, है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ यार वो जो मैं पुराना टाइम था ना जहां पे आप इसी सिचुएशन में थे और शायद इससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थे, जहां पर उस टाइम ने आपको या मुझे तोड़ने की कोशिश की, फिर आपके अंदर जो एक पावर होती है ना सब सह जाने की और फिर सब कर जाने की और फिर वैसे ही हो जाने की, ये पावर आपको कभी हारने नहीं देती, ना ही मुझे हारने देती है। तो इसीलिए मैंने सोचा एक रिमाइंडर दे दूं आपको कि वो सुपर पावर जो आपके अंदर है ना, सब कुछ सह के भी फिर से खड़े हो जाने की, वो हमेशा है रहेगी। टूटना भी अच्छा है, गिरना भी अच्छा है, रोना भी अच्छा है, उसके बाद जो हंसना है वो बड़ा अच्छा है यार। जियो बिंदास।

0: You are the only person who can play our voice on the radio and we can listen it and we can very much please.
1: Simran ji, I love you so kilo.
0: You are very good and we never miss your show.
2: आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और सुनने में मजा आता है. माशाल्लाह सो एनर्जी फुल वॉइस है, सुन के टेंशन दूर हो जाती है, मजा आता है.
3: सिमरन जी, आई लव यू अ लॉट.

0: You're listening to your favorite radio station, Radio Olive 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. ऑफर वैलिड है 31st मई तक. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
2: Hi guys, this is Barsh Shetty Khurana और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ओलिव.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: जॉय आलूकास्ट वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
7: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस. वी कंप्लीट योर

कुछ फोटोज और वीडियोस आई हैं, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है और मेरा मन कर रहा है अभी कभी बाहर जाके चांद को देखने का। आज बज के 21:03 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुकी है। मैच का हाल मैं आपको बता देती हूँ। पंजाब और गुजरात का मैच चल रहा है। पंजाब ने पहले खेलते हुए 164 रन का टारगेट दिया। गुजरात खेल रही है, देखो 4 विकेट अभी तक जा चुके हैं। 14.5 ओवर कंप्लीट होने का स्कोर हो गया है। 124 यानी कि 31 बॉलों पे 40 रन जो है वो जीतने के लिए चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है बट

0: कार्ड के आपके नाम से मिलते हैं। नेम गेम खेलने वाली और लेने वाली हूँ आप सबके नाम। मेक श्योर कि आप अपना नाम जो है टाइप करके रखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ आप मुझे अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, फिर आपका नाम बोलेंगे। यार सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोड, कहते रहिए जियो बिंदास एंड खुश रहो। यार आप अपनी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हो, सो मुस्कुराना बनता है दोस्त।
1: T20 स्कोर अपडेट presented by
2: Luke's Cafe, sweetness that hits straight to the heart. Dadda ki most loved kulfi ab bilkul pass. Madar Kadim Bakra VFS Global ke site, Oak Banafi Metro Kick just next. Instagram pe follow karo and drop by today.
3: Powered by Ahmed Al Maghribi perfumes. Buy 3 get 1 free. Aapne sahi suna, Ahmed Al Maghribi par chal raha hai buy 3 get 1 free offer on all products 15 May tak. This offer is available on all 19 branches.
1: Brought to you by Ibad Sports. Gear up, game on. All your sports needs at one place. Ibad Sports, brand of achievements. Contact 7733-9198.
2: Boundaries hit, flavors ignite. Ab har dish mein lagega desi swad ka tadka with Desi Dhaba. Taste ka real sixer. Desi Dhaba, Bin Mehmood, Tawar Mall and Mall of Qatar.
4: Cool song.
2: Radio Olive par. Aane wala gana, cool song of the hour.
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
4: Cool song.

0: Radio Olive.
1: 106.3 Radio Olive.
2: Gio Bindas.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
8: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
9: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट योर

प्यारी मोहब्बत, 100 किलो वाली मोहब्बत। आई नो वो आप मुझसे करते हो, तो फिर हमारा मोहब्बत जताने का तरीका है अब मैं नेम गेम में लेने वाली हूँ आप सबके नाम, और मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको बताने वाली हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको जो है बताऊं अपना क्या कहते हैं आपका नाम लूं ऑन एयर। तो फटाफट से आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम जो है वो लिख के भेजिए 3311063 पर जी, 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। नो हाई नो हेलो कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका इकलौता नाम जो कि आपके मम्मी पापा ने रखा हुआ है वो लिख के भेज दीजिए फटाफट से। चलिए अब मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। अदील, शुभाशीष, तीरथ प्रसाद, राबिया, यम, नारायण जी थैंक यू सो मच, मोहम्मद जी थैंक यू सो मच, मोइस जी थैंक यू सो मच, केमराज जी थैंक यू सो मच, उस्मान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शाहबाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, हेमराज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ नाम दोस्त, सिर्फ और सिर्फ नाम आना चाहिए 3311063 पर। बबीश जी थैंक यू सो मच, वसीम जी थैंक यू सो मच, खान साहब थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सूरज थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, खेमराज जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रिहाना जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, कासिम जी थैंक यू सो मच, सव्या जी थैंक यू सो मच, इदरीस जी थैंक यू सो मच, प्रिंसन जी थैंक यू सो मच, मोइस जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। दोस्त 3311063 ये व्हाट्सएप का नंबर है, सिर्फ नाम लिख के भेज दो अपना। मिकी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, रेहान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, जवियान जी थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा नाम है, यूनिक नेम है यार जवियान, मैंने पहली बार सुना है। अमन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, सोरोन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, नेहा जी थैंक यू सो मच, साकिब जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, राजीव जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, शेख यासिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। अब जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिए बेटा अब आप थैंक यू लिख सकते हैं, और मानिक जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेजिए। और ये गाना बहुत पसंद है यार मुझे, ये गाना बहुत सुकून देता है, मिकी वायरस का ये गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, 2-1 एंड गो।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Waqra. For more details, call 500-56123.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai. Malai maar ke. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
3: जॉय आलूकास वर्ल्ड्स फेवरेट जुगर
4: सपोर्टेड बाय होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम

और मैं भी लापता होने वाली हूँ, फिर आऊंगी शाम को कल 5 बजे. चलो फिर कल शाम को होती है 5 बजे आपसे फिर से मुलाकात. और गुजरात ने आज का मैच जो है वो 4 विकेट से जीत लिया, तो बधाइयां मिठाइयां दे बहुत सारे पटाखे. अभी मिडनाइट लाउंज जो है वो उसको सुनने के लिए तैयार हो जाइए. सो खाने पीने रो, ऐश कर दे रो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना. बी नाइस टू एवरीवन यार. गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू सो किलो.

देखो कहना तो चाहता हूँ बी अ मैन, पर कहूंगा बी अ जेंटलमैन। वो मिल जाए तो इज्जत करना, और ना मिले तो बदनाम मत करना। हाय हाय हाय हाय हाय, क्या कही, कभी कभी दो लाइनों में ऐसे अल्फाज दे देता हूँ कि उसके बाद खुद पे प्यार आने लगता है। हे, दिस इज मी आरजे आकाश, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में आ चुका हूँ जनाब। और एक ऐसी शाम में जहां बस सिर्फ मौसम ही खूबसूरत नहीं होगा, बाहर का नजारा ही सिर्फ खूबसूरत नहीं होगा, खूबसूरत होगा हर एक वो लम्हा जो मैं आपके साथ स्पेंड करने वाला हूँ और जो आप मेरे साथ स्पेंड करने वाला है। कंपनी ऑलवेज ऐसी चुनो जिसके साथ टाइम निकालना ना पड़े, गुजारना हो, मतलब फील करना हो यार, एक एक सेकंड, एक एक क्षण ऐसा लगे कि क्यों ये बीत रहा है, बस इसी तरह चलता रहे। तो चलिए आसमान की तरफ देखिए, उन तारों की तरफ देखिए, तारे ना दिखे तो इस चांद की तरफ देखिए, यानी शीशे की तरफ देखिए, आप दिख जाएंगे जनाब। ज्यादा ही फ्लर्टी हो गया क्या यार, कोई दिक्कत नहीं। कौन है यार, देखिए आप ही तो जिस समय दिल की सारी बातें कर पाता हूँ, जिसको सुकून से प्यार कर पाता हूँ। तो चलो प्यार थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, प्यारे प्यारे गाने चलाते हैं, ताकि हर एक मोमेंट हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी के साथ और हैप्पी मोमेंट बन जाए। जियो बिंदास।

0: अच्छा कभी कभार आपका दिमाग साइंटिस्ट वाला बिहेवियर नहीं करता, मतलब ऐसा नेचर नहीं हो जाता कि अजीब और अजीब से सवाल आ जाते हैं, और आपको पता है जो भी सवाल दिमाग में उत्पन्न होते हैं, जो इन्वेंट होते हैं ना, उनका इन्वेंशन ऑलरेडी कहीं ना कहीं हो चुका होता है, उनका जवाब कहीं ना कहीं ऑलरेडी मैंशन होता है यार, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सवाल जो है ना वो इस नेचर ने या फिर इंसान ने ही क्रिएट किए हैं।
1: रील वाली रियल कहानी।
0: Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज मिडनाइट लाउंज में। और एक बड़ा अजीब सा सवाल था, मेरे से किसी ने पूछा यार ये हेलो क्यों बोलते हैं। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की मैंने, मैंने भी कहा यार ये चीज तो मैंने भी कभी सोची। एक्चुअली इसके पीछे का रियल कहानी ये थी कि जब टेलीफोन नया नया इन्वेंट हुआ था तब लोग कंफ्यूज थे, फोन उठाते के बाद क्या सबसे पहला बोला जाए, कैसे भाई सामने वाले को किस तरह से बात करी जाए, किस तरह से उसको फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली भी कैसे ये उसको यू नो नोटिफाई किया जाए कि आई कैन हियर यू। तो अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, जिनका नाम था अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, इन्होंने अहोय बोलना चाहा था, पर एक इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने सजेस्ट किया यू कैन यूज हेलो। उनका लॉजिक सिंपल था, हेलो एक लाउड क्लियर और फ्रेंडली वर्ड था जो लाइन के दूसरे साइड तक इजीली पहुंच जाता था, और बस वही वर्ड फोन कॉन्वर्जेशन का पहला सिग्नल बन गया। वैसे आज भी मैं देखता हूं ना, जब आवाज नहीं आती तो यही सिग्नल कुछ ज्यादा ही हाई चला जाता है, हेलो हेलो हेलो लेकिन यही हेलो कभी कभार किसी की एक आवाज सुनने के लिए, हेलो, एक हेलो में कितने सारे एक्सप्रेशन है ना। वैसे मुझे हमेशा राजकुमार राव की वो वीडियो याद आया थी जिसमें उन्होंने एक ही वर्ड के क्या इतने सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस में बोल के दिखाया था। वैसे आप भी एक एक्टर से कम नहीं है यार, हैं यार, आप ही देख लो आप हेलो कितने अलग अलग वे में बोल सकते हो, बोल के देखो आप कम से कम 20 तरह से हेलो अलग बोल सकते हो। अगर बोल सकते हो तो जल्दी से मुझे इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है भेजो हेलो को अलग अलग स्टाइल में बोलकर, हम भी तो देखें आपके इन्वेंशंस और एक्टिंग के स्किल्स क्या है। जियो बिंदास।

अच्छे डायलॉग्स याद आए ना आए, लेकिन कुछ गाने हमेशा सबसे पहले याद आते हैं, जब वो विदाई का दर्द आता है, जब प्यार अधूरा रह जाता है ना, है वो आंखों की नमी और वो आवाज जो सीधा दिल तक जाती है। Hey, this is me, RJ Akash, आपके दिल की आवाज। मिडनाइट लाउंज में चलो आपको ले चलते हैं।

फिल्मी फ्लैशबैक के सफर में आज का यही एक प्यारा सा सवाल था मेरे से आपका, आपको 30 सेकंड के अंदर जवाब देना है। देखो 30 यानी जैसे ही मैं सवाल बोलूंगा उसके बाद, आप गूगल नहीं कर सकते और वो कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपने सबसे पहले सटीक जवाब दिया विद इन 10 सेकंड, क्या कह रहे हो 30 दिए ही क्यों, नहीं 10 सेकंड के अंदर अगर आपने सबसे पहले सही जवाब दिया तो आपके नाम के साथ एक बढ़िया सा गाना मैं डेडिकेट करूंगा या तो आपकी पसंद का। ओके तो स्टार्ट करते हैं, पहले इंस्टाग्राम पे जाओ, खोला इंस्टाग्राम क्लास, जल्दी से इंस्टाग्राम खोलो उसके बाद रेडियो ऑलिव को फाइंड आउट करो, फॉलो करो, फॉलो जरूर करना ताकि रिश्ता क्या कहलाता है कोई पूछे तो हम बता सकते हैं। जी हाँ खास है जी अपना रिश्ता हर जगह पे जा जाके, क्या कह रहे हो आगे बताओ। ओके इनबॉक्स में जाओ और हाय आरजे आकाश लिखो, जल्दी से रेडियो ऑलिव का पेज फॉलो करेगी हाय आरजे आकाश। और अब है जी अगला सवाल, सवाल ये है चन्ना मेरे या मेरे या, चन्ना मेरे या मेरे या, क्या लगता है सवाल क्या होगा। अरे यही सिंपल सा सवाल है कि गाना किस सिंगर ने गाया है, और अपनी यादों के प्लेलिस्ट जो है ना उसको थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा, ना कि गूगल कीजिए। जल्दी से याद कीजिए, आवाज को रिमाइंड कीजिए, फोकस कीजिए, आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलिए आके बताते कौन जीता है, किसके नाम के साथ बढ़िया सा गाना। अरे भाई गाने का नाम तो लिख के भेजो, आपने आंसर तो लिख दिया, कौन सा गाना सुनना चाहते हो। जी ओ बिंदास

अच्छा प्यार अधूरा रह जाए ना तो मुझे लगता है दुनिया भर के इतने गाने की प्लेलिस्ट प्यार करने वालों से ज्यादा दिल टूटने वालों के लिए ज्यादा लंबी है। नहीं, दिस इज मी आरजी आकाश, आपकी दिल की आवाज। और दिल की आवाज तो यार हर किसी की निकल आती है उन गानों के साथ जब दिल टूट जाए। हाय हाय हाय। वैसे देखो यार, दिल टूटने टूटाने की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ गाने हैं ही ऐसे जिनको याद तभी किया जाता है जब दिल टूट जाए। इतने प्यारे गाने यार, इसलिए कहते हैं कि बिना दिल टूटे भी याद कर लिया करो।

चलिए फिल्मी फ्लैशबैक का आज का मेरे पास जवाब आ गया है। सरफराज जी का सबसे पहले सटीक जवाब है, इस गाने की आवाज में दर्द नहीं आकाशी, एक इमोशनल गुडबाय था मेरे लिए। आई यार चन्ना मेरे यार, ये गाना अरिजीत सिंह ने। आई सबसे इजीस्ट आंसर था यार। देखो सबसे ज्यादा सही जवाब मेरे को लड़कों के आए हैं, सबसे ज्यादा दिल टूटे उन्होंने ये गाना सुना है। और ये गाना फिल्म ए दिल है मुश्किल का हिस्सा था। इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं इस मूवी की और इस गाने के बारे में, इस गाने में रणबीर कपूर की इमोशनल परफॉर्मेंस और अरिजीत की आवाज का दर्द इतना रियल लगा कि लोगों ने इसे ब्रेकअप का एंथम बना दिया है। और हाँ, अरिजीत ने इस फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस भी की थी वेडिंग सिंगर के रोल में, अगर आपने देखा हो तो। ये थी फिल्मी फ्लैशबैक की एक ऐसी झलक जिसने वापस से ब्रेकअप के लम्हों को याद दिला दिया। नहीं लेकिन कोई नहीं, हम वापस से आपको हैप्पी कर देंगे जी। हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी जो सुन रहे हैं आप, जियो बिंदास।

0: देखो यार, ब्रेकअप किसके नहीं होते हा? क्या कह रहे हो? मतलब बात उल्टी कह दी, प्यार किसको नहीं होता? नहीं नहीं, ब्रेकअप भी बहुतों के होते हैं यार। आज के टाइम पे ब्रेकअप बहुत यूज्ड हो गए। क्या कह रहे हो, इट्स नॉट साउंड कूल? नहीं यार, इट डिडंट एट ऑल, कभी साउंड कूल कर ही नहीं सकता दिल टूटना। सबसे गंदी चीज होता है दिल टूटना, लेकिन एक बार टूट गया तो बस उसके बाद आपको प्यार करना सिखा देता है। यकीन मानो, वो लोग सबसे ज्यादा जो कहा करते थे प्यार व्यार बेकार की चीज होती है, अग्री करते हो ना, वो ही लोग आज प्यार में इतना डूब चुके होते हैं कि वापस निकलते टाइम ना उनको प्यार क्या चीज होती है, मतलब वो स्माइल कर रहे होते हैं अपने आप को याद करके, अपने उस पुराने रूप को याद करके, अपनी उन पुरानी बातों को याद करके, है कि नहीं?
1: डिजिटल डायरी।
0: Hey, this is RJ Akash, आपके दिल की आवाज। और दिल से आज मैंने डिजिटल डायरी का एक पन्ना खोला जिसमें लिखा था कॉन्सेप्ट आज का, जेंटलमैन। वो मिल जाए तो इज्जत करना और ना मिले तो बदनाम मत करना, बदनाम कभी मत करना। कहते हैं जब किसी से प्यार करो ना, तो वो प्यार ही क्या जो उस इंसान की बुराइयों को खोजे, वो प्यार ही क्या जो ना मिलने पर भी उसको इतना ज्यादा कोसे कि कभी शक होना स्टार्ट हो जाए दुनिया को, यार इसने इससे प्यार किया था या समझौता। तो अगर कभी किसी से प्यार हो और अगर वो मिल जाए तो उसकी इज्जत करना, उसका ख्याल रखना, उसको संभाल के रखना। और अगर ना भी मिले ना, तो यकीन करना वो प्यार ही क्या जिसमें अगर उसकी कद्र ना की जाए, उसको खोने के बाद उसको ऐसा खो दिया जाए कि वो इंसान भी आपसे मतलब दूर भागना चाहे, वो कहे कि अच्छा है मैं बच गया। जिस दिन आपका प्यार आपको ये बोल देना थैंक गॉड मैं बच गया, बस समझना कि कोई ना कोई आपने पक्का ऐसा काम धुरंधर वाला किया है जिसके बाद आज उसे गिल्ट हो रहा है कि उसने आपसे प्यार ही क्यों किया। और ये प्यार की सबसे गंदी चीज़ होता है एक ऐसा मोमेंट। देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट जब प्यार मिलता है ना, तो उसको हर आदमी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन जब वो खोता है उसे, अभी उसके ऊपर डिपेंड करता है। या तो उसे प्यार करेगा, यादों में रखेगा, चुपचाप साइलेंटली अपने आप को वहां से रिमूव कर देगा, वैनिश कर देगा उन चीज़ों को भी धीरे धीरे, आगे बढ़ जाएगा, या फिर उसे बदनाम करेगा। पर याद रखना, जो बदनाम किया वो प्यार नहीं, प्यार तो वो है जो आबाद करते। जी, ओपन दास।

अच्छा, कुछ फैसले ना मुझे लगता है सच में लाइफ में छोड़ देने चाहिए। लाइफ कुछ फैसले रातों रात ले लेती है, कुछ सेकंड्स में ले लेती है। कभी कभी जिंदगी एक ही रात में फैसला लेकर आपकी जिंदगी बदल देती है, या तो सपने तोड़ देगी या तो इंसान को कुछ ना कुछ बना ही देगी। हे, दिस इज मी आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में, और चलिए ले चलते हैं आपको एक कहानी सुनाने। अच्छा दोस्तों, सोचिए 19 साल का एक लड़का जो जेब में सिर्फ 37 रुपीज, इंडियन 37 रुपीज, शहर नया मुंबई में आ गया और सपने सिर्फ एक थे, एक्टर बनना है। ये कहानी है अनुपम खेर जी की, मुंबई की एक रात जब उनके पास ना खाना था, ना रहने की जगह, ना ही अगले दिन का कोई प्लान था। स्टेशन के पास बैठे हुए आंखों में आंसू और दिल में सवाल थे, क्या मैं गलत शहर में तो नहीं आ गया? जैसे कि हम सबके साथ होता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। कहते हैं जब कुछ सही करने वाले हो ना, उससे पहले अक्सर ये वाले ख्याल मन में आते हैं कि क्या मैं कर लूंगा, मैं सच में इस चीज के लिए एलिजिबल भी हूं। उसी रात उन्होंने फोन उठाया और शिमला में अपनी माँ को कॉल किया। रोते हुए बोले, माँ मैं फेल हो गया, वापस आ जाऊं। माँ की आवाज आई शांत मजबूत, बेटा तू फेल नहीं हुआ, तू बस सीख रहा है, वापस आने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए पैदा हुआ है। यार क्या बात बोली ना, ऐसी बात, माँ की कुछ सीखे ऐसी होती है, कहां से कहां इंसान को पहुंचा देती है। दोस्तों वो एक रात और अनुपम खेर को एक्टर ही नहीं, सिर्फ इंसान के लेजेंड, मतलब इंसान के रूप में एक लेजेंड बना दिया उस रात ने। अगले ही कुछ सालों में सारांश, फिर 500+ मूवीज, हॉलीवुड, नेशनल अवार्ड्स, और हर इंटरव्यू में वही ह्यूमिलिटी। इसलिए कहते हैं कि एक रात सही हिम्मत के साथ गुजार लो, पूरी जिंदगी रोशन हो जाएगी। मैं हूं आरजे आकाश, आपके साथ इसी तरह से मिडनाइट लाउंज में हर रात एक ऐसी कहानी लाता रहूंगा जो आपकी हर एक रात, हर एक सपने को रोशन करेगी। जियो बिंदास।

0: अच्छा तुमने कभी नोट किया है कि हर कोई ये सवाल पूछता है और खासकर हमसे तो बहुत पूछता है, नाइट शो करने वाले तो सबसे ज्यादा पूछते हैं। आरजे इसके लिए सबसे पहला सवाल होता है कि ट्रू लव कैसे ढूंढे, ट्रू लव। आइए जवाब देते हैं।
1: यू शुड नो बिफोर यू स्लीप।
2: Before you sleep.
0: तो जनाब बिफोर यू स्लीप में आपके दिल की आवाज आरजे आकाश मिड नाइट लाउंज में आपको ये कहना चाहती है कि सच्चा प्यार ना ढूंढा नहीं जाता पहली बात, और जो भी सच्चा रिश्ता होता है ना वो ढूंढा नहीं जाता। आपका आज जो बेस्ट फ्रेंड है, क्या आपने वो तो ढूंढा था? नहीं ढूंढा था ना, खुद ब खुद आ गया था ना लाइफ में, खुद ब खुद वो बेस्ट होता गया ना। दोस्त बनते हैं, वो बनाए नहीं जाते हैं, राइट? बचपन नहीं कि अब्बा कट्टा चल रहा है यहाँ पे, बस दोस्ती हो गई और आगे बढ़ गए। स्कूल में वो क्रश, वो ढूंढा नहीं था, वो बस आ गया था दिल किसी भी। ठीक उसी तरह से लाइफ में जब कोई आना होगा ना तो ढूंढना नहीं चाहता है। कितनी एप्लीकेशंस डाल लूं वहां पे वो शायद दिल नहीं लग पाएगा। इट्स लाइक हो सकता है लग जाए, मजबूरी हो या कोई ना मिल रहा तो ऑप्शन बन जाए, बट जब एक्चुअल में दिल लगना होता है ना तो वो ऐसी मुलाकात होती है कि आंखों से आंखें टकराती हैं। तो बिफोर यू स्लीप ये प्रेशर लेना बंद होगी, शादी कब होगी, हो नहीं रही है, जब होनी होगी ना हो जाएगी। बस दरवाजे दिल के खोल के रखो, 10 लोगों के लिए नहीं, एक के लिए, और अब के बाद जिसको भी केयर से रखो। मैंने समझाया ना, जेंटलमैन बनना है, और जेंटलमैन वो है जो मिल जाए तो इज्जत करता है और जो ना मिले तो भी उसे बदनाम नहीं करता है। जियो बिंदास।

अच्छा, मैंने एक चीज तो लाइफ से सीख ली है, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है ना, वो सबसे खास होती है। और अनएक्सपेक्टेड लोग जब मुलाकातें करते हैं तो वो भी खास होती है। अगर आपने अभी अभी ट्यून इन करा है तो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा आप लेट हो गए और कौन था ये, किसकी आवाज थी, तो जनाब मैं वो दिल की आवाज हूँ जो हर रात सिर्फ कतर में ही नहीं पूरी दुनिया भर में रेडियो ऑल ऑफ द हैप्पीनेस फ्रिक्वेंसी के थ्रू लोगों के दिल में ना हैप्पी हैप्पी जाती है, सैड से दिल को वापस हैप्पी कर देती है। तो अगर आप आज जुड़े हैं तो डोंट वरी, आप फिर से जुड़ सकते हैं। कैसे? इंस्टाग्राम पे रेडियो ऑल का पेज है, फॉलो कर लो ताकि सारी अपडेट्स आती रहें। और बाकी रात को 10 बजे से रात के 12 बजे, मतलब सुबह के अर्ली मॉर्निंग 12 कह लो या फिर रात के 12 बजे तक हमारा साथ होता है। एक नए दिन की शुरुआत होने तक का सफर मैं आपको लेकर जाता हूं। और बाकी जो सफर है ना, जिंदगी का हो या गाड़ी का, उसे खूबसूरत बनाने का जिम्मा मेरा होता है। इसलिए बढ़िया से बढ़िया गाने अभी भी लगा के जा रहा हूं और जाता जाता आपका ये सफर इतना हसीन बना के जा रहा हूं। वैसे तो आप खुद इतने हसीन हैं, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा बूस्ट करने की जरूरत होती है। और ऑब्वियसली अगर दोस्त अगर ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब भी अकेला फील हो बस बिंदास मैसेज कीजिए। क्योंकि याद रखिए, मन में भर कर नहीं जीना है, मन भर के जीना है। तो मन को भर के जीने के लिए मन से बाहर निकालना होगा जो भी भरा हुआ है। कैसे? अपने दोस्त के साथ शेयर करो। कौन सा वो दोस्त है? और कोई नहीं यार, मेरे साथ शेयर करो। इंस्टा पे रेडियो ऑलिव का पेज है, फॉलो करके ये रिश्ता क्या कहलाता है बता पाएंगे। और बाकी इनबॉक्स में हाय आरजे आकाश और आपके दिल का हाल, ताकि मैं सारी दिक्कतों को बेहाल कर दूंगा। जियो बिंदास, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।

0: धुरंधर दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओली 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग
1: 106.3 रेडियो ओली जियो बिंदास। रेडियो ओली योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ.
2: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।